प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: A very good morning आप सभी को सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ सुनते हैं।

0: नमस्कार आपको करुणा जी।
1: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। बोभा सरोज हिल का नया मेयर MMM के लुई ऑन्द्रे टुसें बने हैं। उन्होंने गैब्रिएला बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बने रहेंगी। गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगले दो वर्षों में 50 द्विभाषी मॉरिशस नागरिकों की भर्ती की जाएगी। और विदेश में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया है।

0: देश में ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक लागू रहेगी। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जाएगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और दिन के दौरान हल्की बारिश होगी, खासकर ऊंचाइयों और दक्षिण में। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, खासकर रात के दौरान। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। उच्च ज्वार के समय लहरें जो हैं पश्चिम एवं दक्षिणी इलाके में तटों से भी टकरा सकती हैं, इसलिए मछेरों, मनोरंजन नौकाओं तथा आम जनता से अपील की जाती है, ज़ोरदार अपील की जाती है कि वे लोग उच्च ज्वार के समय इन तटों पर न जाएं। आज के लिए सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:38 पर।
1: RM3 Radio.

सदकल्लाहु अज़ीम। अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की। पेश खिदमत है एक अहमद, आइए समाअत करते हैं।

या बकरे ईद के नाम से पुकारते हैं। जो इस अशरे की 10 तारीख को होती है और अहले इस्लाम की बड़ी ईद है, बहुत एहतमाम से इसे मनाया जाता है, बहुत जोशो खरोश के साथ अहले इस्लाम इसे मनाते हैं। ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का दिन होता है, अल्लाह की खास और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह का दिन होता है, जहां दिन की अहमियत है तो वहां ईद उल अदहा की रात भी इनाम और इल्ताफ की रात होती है। अल्लाह जल्ल मजहू की खास रहमत और खास नवाजिश और खास इनाम और इकराम की रात होती है। ईद चाहे ईद उल फितर की हो या ईद उल अदहा की, दोनों बहुत ज़्यादा शान वाली रातें हैं। इंसान के सईद और खुशबख्त होने का ज़रिया हैं ये रातें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद उल फितर और ईद उल अदहा की रातों में अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब पाने के लिए क़याम किया, इबादत की, अल्लाह को याद किया, तो उसका दिल उस दिन मुर्दा न होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। आम तौर पे लोग इन रातों की अहमियत से नावाकिफ होने की बिना पर इन्हें खेल कूद में और तमाशों में गुजार कर बजाय अपने सआदत का ज़रिया बनाने के अपनी शकावत का ज़रिया बना देते हैं। ये उन मुबारक 10 रातों में आखिरी रात है जिनकी कसम अल्लाह पाक ने वलयालिन आश्र में उठाई है कि कसम है 10 रातों की। सो ईद उल अदहा की रात भी आपको

0: नेकियां कमाने, अजर व सवाब को हासिल करने में गुजारनी चाहिए हर उस काम से। इन रातों में भी बचना चाहिए जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं। तो सुबह शाम अल्लाह से ये दुआ मांगें कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वमा अलैना इल्ला बला।
1: अभी अभी आपने जामिया मस्जिद पोर्टलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामर बरकातहुम अलिया का ये बयान सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस बयान से इबरत पकड़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन मोहतरम, यौम अरफा के रोज़े की फजीलत। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अरफा के दिन का रोज़ा एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यौम अरफा यानी 9 ज़ुलहिज्जा का रोज़ा बहुत अजीम इबादत है। जो लोग हज पर न हों उनके लिए ये रोज़ा ख़ास फजीलत रखता है। इस रोज़े की बरकत से 2 साल के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यह अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत का मज़हर है। इस दिन दुआ, इस्तिग़फ़ार और इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए।

अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, इसमें हमारे लिए क्या अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की यादगार है। इस अमल के ज़रिए बंदा अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपनी फरमाबरदारी जाहिर करता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स, ख्वाहिशात और गुनाहों को अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बान करने का दर्स भी देती है। इखलास के साथ की गई कुर्बानी अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत महबूब

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अजीम दिन यौमुन नहर 10 ज़ुलहिज्जा है, फिर उसके बाद वाले दिन है। ईदुल अधा का दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अजमत वाला है। इस दिन नमाज ईद, कुर्बानी, दुआ और अल्लाह का ज़िक्र करना बहुत अफजल है। मुसलमान को चाहिए कि इस दिन खुशी के साथ अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्र अदा करे और अपने आमाल को सुन्नत के मुताबिक अंजाम दे। इन मुबारक अय्याम में इबादत इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। सामिन मोहतरम, ज़ुल्हिज्जा के दिन रहमतों और बरकतों के ख़जाने हैं। इन दिनों में अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, दिल से तौबा करें और आइंदा गुनाहों से बचने का अहद करें। अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही से तर रखें। नमाज तहज्जुद और नवाफिल का अहतमाम करें। जो लोग इस्तेआत रखते हों वो कुर्बानी ज़रूर करें। मिस्कीनों, यतीमों और ज़रूरतमंदों को अपनी खुशियों में शरीक करें। अपने घरों में दीनी माहौल कायम करें। इन दिनों में हर नेकी का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ इबादत करने और इन मुबारक दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, सबा खैर प्रोग्राम अनकरीब ख़त्म होने वाला है। आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

Just to remind you, ladies and gentlemen, मैंने नाटी लाइव कार्यक्रमलो मेरु कोड़ा मी टेक्स्ट मैसेजेस मी एसएमएसेस तो ने मेरु कोड़ा पागुना वोच्चू, so keep calling and keep sending me texts on 5789-3663.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। समस्त श्रोताओं को नीत उषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में। आइए श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओ, इन दिनों रामचरितमानस के पाठ पढ़े जा रहे हैं। यह मास जो है बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ है। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाला मास माना गया है। वैसे पुरुषोत्तम मास का संबंध भगवान विष्णु से होता है और इसे पुरुषोत्तम नाम स्वयं भगवान ने प्रदान किया है। यह मास लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है, जब चंद्रमा और सूर्य के समय में अंतर को संतुलित करने के लिए एक अधिक मास जोड़ा जाता है। इस पवित्र मास का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि माना गया है कि इस दौरान की गई भक्ति, दान, जप, तप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके जीवन में दुख, पाप और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगती है। इस मास में रामायण, भगवद गीता या फिर विष्णु पुराण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवद गीता और रामचरितमानस का पाठ मन को आध्यात्मिक

0: श्रोताओ, हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आइए रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्ति, मर्यादा, प्रेम और जीवन के आदर्शों का अमृत सागर है। रामचरितमानस को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने आम जनता के लिए सरल भाषा में रचित किया, ताकि हर व्यक्ति प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इस पवित्र ग्रंथ में सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले अनमोल संदेश भी छुपे होते हैं।
1: जय

रामचरितमानस हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, विनम्रता, दया, कर्तव्य और मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री राम का जीवन एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा का प्रतीक है। माता सीता का धैर्य और पवित्रता, लक्ष्मण जी की सेवा भावना और हनुमान जी की निष्काम भक्ति हर भक्त के हृदय को भक्ति रस से भर देती है। राम का हर चरित्र जीवन को एक नई रोशनी देता है।

जब भी व्यक्ति दुखी होता है, मन अशांत होता है या जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब रामचरितमानस का पाठ मन को शांति और आत्मा को बल देता है। इसके दोहे और चौपाइयां मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। राम नाम का जप और रामचरितमानस का श्रवण व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय सदैव सच्चाई और धर्म की ही होती है। रामचरितमानस का महत्व वैसे श्रोताओं केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा है। भारत की परंपराओं, त्योहारों, संस्कारों में इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। रामलीला और रामायण पाठ के माध्यम से लोगों में एकता, भक्ति और संस्कार का प्रचार होता है।

जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से रामचरितमानस का पाठ करता है, उसके जीवन में धैर्य, शांति और भक्ति का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रभु और प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। रामचरितमानस सच में एक दिव्य प्रकाश है, जो अंधकार से भरे जीवन को भी आस्था और उम्मीद की रोशनी से भर देता है। प्रणाम। शुभ दिन।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी श्रोताओं को भी नमस्कार। राधा 12 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। गणेश चतुर्थी मॉरिशस में मराठी समुदाय के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल ये त्योहार मॉरिशस में बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाएगा। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया है। फेडरेशन के मुख्य पुजारी शांताराम रज्जू ने बताया कि हिंदू पंचांग को देखने के बाद ये निर्णय लिया गया, जिससे त्योहारों की सही तारीख तय की जाती है। पहले सरकार द्वारा जारी साल 2026 की आधिकारिक छुट्टियों की लिस्ट में 16 सितंबर को सरकारी छुट्टी घोषित की गई थी। अब इस तिथि को बदलने के लिए सरकारी आदेश में जरूरी संशोधन किया जाएगा। शुक्रवार को गांववासियों में हुई घटनाओं और कौतूहल में हुए हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया। इसके बाद वकील काविराज बकुरी ने शनिवार को कला एवं संस्कृति मंत्री महेन गुंदिया से मुलाकात की। इस बैठक में मंत्री के सामने कुछ सुझाव रखे गए। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में आने वाले पर्यटकों के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाना। इन सुझावों में एक मुख्य बात यह है कि इस पवित्र धार्मिक स्थल पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फीस लागू किया जाए। कल रिफॉर्म पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया, जिसमें देश के कई जरूरी मुद्दों पर बात की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से बढ़ती महंगाई, खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी मजदूरों की स्थिति पर चर्चा हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी के महासचिव रियाद सुब्राची ने बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती लागत के कारण मॉरिशस के कई परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोबासिन रोजिल के नए मेयर लुई आंद्रे टूसें बने और वे MMM पार्टी से हैं। शनिवार दोपहर को नगर पालिका की एक खास बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के नियमों के तहत उनको चुना गया। वे गैब्रिएला बातू की जगह लेंगे। उनकी मदद के लिए जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर के पद पर रहेंगी, जो रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव पार्टी से हैं। सिटी बॉकले के रहने वाले मेयर लुई आंद्रे टूसें इससे पहले साल 2012 में भी मेयर रह चुके हैं। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि इजराइल और अन्य सहयोगी देशों के साथ बातचीत के बाद ईरान के साथ एक शांति समझौता काफी हद तक तय हो गया है। ट्रंप के अनुसार औपचारिक घोषणा से पहले समझौते के अंतिम विवरणों पर चर्चा की जा रही है। उधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि एक समझौता काफी हद तक तय हो गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और सूची में शामिल अन्य विभिन्न देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: बारह बजकर बारह मिनट हुए हैं। आज है रविवार 24 मई 2026 और मैं हूं देविना, आप सबों का साथ देने के लिए सुहाना सफर प्रोग्राम ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। वैसे ये तस्वीरें जो हैं ये कमाल के होते हैं, बीते लम्हों को फिर से जवान कर देती हैं। और पुराने पोस्टकार्ड, उनमें लिखे अल्फाज आज भी दिल को छू जाते हैं। जय नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, साथ में गुड आफ्टरनून आप सभी को। और लेकर हाजिर हुए हैं आपका ही पसंदीदा संगीतमय कार्यक्रम सुहाना सफर। आज की इस प्यारे रविवार दोपहर में हम खोलेंगे यादों की वो पुरानी अलमारी जहां रखी हैं बचपन की तस्वीरें, मम्मी पापा की शादी के एल्बम, दोस्तों के साथ खिंचवाई गई ब्लैक एंड वाइट फोटो और वो रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड जो कभी दूरियों को भी अपनों के करीब ले आते थे। तो चलिए यादों की खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमने कर ली है इस बहुत ही लोकप्रिय गाने से, फिल्म बेताब और 80s का गाना था, शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में तेरी तस्वीर मिल गई। तो चलते हैं, आज तस्वीर की बात करते हैं, पोस्ट कार्ड की बात करते हैं। और आज अभी तक आपके पास फोटो एल्बम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक ये गाना आप सबों के नाम करते हैं और आई एम श्योर ये गाना आप सबों को याद है, आप ये गाना पसंद करते हैं और साथ में गुनगुनाएंगे। आई एम श्योर फिल्म है माया, लता जी की आवाज़ में, साथ में होंगे रफ़ी साहब, देवानंद साहब को याद करते हैं, तस्वीर तेरे दिल में।

0: बिग बी बच्चन साहब की आवाज़ फिल्म महान खूबसूरत गाना ये था आप सबों के लिए
1: RM3 Radio.

एम फ्री रेडियो मनोरंजन से मैं हूँ दीविना, आपके संग 3 बजे तक हमारा और आपका खूबसूरत सफर होगा। और क्या दौर था दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ना तस्वीरों को पर, फोटो पर, वो पोस्ट कार्ड। और जब तस्वीरें मोबाइल से नहीं दिल से खींची जाती थी, आपको याद है ना वो पुराना वाला जो कैमरा, एक फोटो खिंचवाने के लिए सब नए कपड़े पहनते थे, फिर स्टूडियो जाकर सीधा बैठना पड़ता था। वे कहते थे, फोटोग्राफर कहते थे, बस सीधा बैठो। या फिर फोटोग्राफर पहुंच जाता था घर और सभी परिवार जो हैं, फैमिली के लोग, छोटे बड़े, सच धज के वेट करते थे कि कब फोटोग्राफर आए और सभी की फ़ोटो खींचे। और हम सोचते थे कि क्या पोज लें, और वो कहते थे नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा पोज मत लो, बस सीधा खड़े हो जाओ। इतना सीधा खड़े हो जाते थे कि फोटोग्राफर को कहना पड़ता था ज़रा मुस्कुराइए ना, प्लीज़ स्माइल। और पोस्ट कार्ड की बात करें तो सिर्फ कागज़ नहीं होते थे, उनमें अपनों की खुशबू बसती थी। याद है ना जब किसी का बर्थडे होता था या फिर नए साल का ज़माना, वो मौका था ना, सो हम दौड़े दौड़े हम जाते थे शॉप, वहाँ पर खरीदते थे पोस्ट कार्ड, उसमें होते थे तस्वीरें जो हैं हमारी फेवरेट हीरो या हीरोइन का, और साथ में फूलों की तस्वीरें या फिर कोई भी, हम उसके पीछे लिखते थे अपनों का नाम और पोस्ट करते थे। क्या ज़माना था, यादें कभी पुरानी नहीं होती दोस्तों, बस वक्त के साथ और भी कीमती हो जाती हैं। तो तस्वीरों पर आधारित आज एक दो गाने हम चलाने वाले हैं, साथ में आपकी फरमाइशें भी ऑन 4028070 4280 और मैसेजेस तो आने शुरू हो चुके हैं 5250 6200 पर 5250 6200। तो ज़रा चलते हैं पहली रिक्वेस्ट की ओर। वाकवा से नंदलाल जी पहले श्रोता हैं जिन्होंने हमें कॉल किया, नमस्कार जी नंदलाल जी। और वे क्या सुनना चाहते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म है प्यार की जा और कहने की नहीं, और रामलाल मुर्दाबाद इस गाने को वो सुनना चाहते हैं अपने अपनी खुशी के लिए और साथ में सभी लिसनर्स के लिए। सो ये गाना आपके लिए नंदलाल जी।

0: नौकरी चाहिए
1: चाहिए
0: नौकरी
1: जो नौकरी न दी तो मिटा के रख देंगे ये बंगले ये कारे जला के रख

नजर तो मिला जा, तू चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा जा।

0: RM3 रेडियो रेडियो।
1: हाँ, जरा हंस के, जरा और खिलखिला के।

किशोर दा की मनमस्त आवाज में हमने सुना फिल्म हीरा पन्ना का खूबसूरत गाना। वैसे आज हम तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट गॉड की बातें में हो रहे हैं। सो कभी आपने गौर किया है कि पुरानी तस्वीरें जो हैं देखकर इंसान मुस्कुरा भी देता है और कभी कभी आंखें भी नम हो जाती हैं। एक छोटी सी फोटो और उसमें कैद पूरी कहानी और पूरी एक उम्र, पूरा एक परिवार, पूरी एक दोस्ती। और कई लोगों के पास आज भी वो पुराने पोस्ट कार्ड संभाल कर रखे हुए हैं जिन पर लिखा होता था, हम यहाँ कुशल मंगल हैं, हम ठीक हैं, बेस्ट विशेस टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर एंड जॉयफुल संक्रांति। आपको याद है ना? वैसे आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, डिजिटल वर्ल्ड, इस में शायद वो एहसास कहाँ होगा, यह एहसास कहीं खो गया है। तस्वीरों में कैद लम्हे बोल नहीं पाते मगर चुप रह कर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, कभी आपने महसूस किया है? बस तस्वीरों के बारे में जितनी बात की जाए वो उतना कम है। तो बढ़ते हैं अगली जो फरमाइश है। माना जी हैं रवे जगहों पर से हमेशा आसा देती है और फिल्म है, हाँ यहाँ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में, तस्वीर बनाता हूँ तेरी तस्वीर नहीं बनती। वैसे इसका दो वर्शन है, तलत महबूब साहब की और रफ़ी साहब की, और ये गाना जाएगा फोकनीर कबीर कनिष केविन किरण शिव और सत्यम और जितने लोग इस गाने के शौकीन हैं, इस गाने की को पसंद करते हैं। बस तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। और आप सुन रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र प्रोग्राम।

रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म दीवाना का ये गाना आ गया। तो ये जो गाना हमने बोला था, आपने मांगा था, वो हम चलाएंगे कुछ देर में। अभी के लिए बस तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बताइए, आपके पास आज भी कोई पुरानी तस्वीर या पोस्टकार्ड सुरक्षित है? क्या उसे देखकर कोई खास याद जो है ताज़ा हो जाती है, कोई खास याद आ जाता है? तो बस बैठे बैठे ना, कभी कभी जो संडे का दिन होता है, तस्वीर देखने का मन करता है, किसी से बात करने का मन इतना नहीं करता, मगर तस्वीर देखकर यादें ताज़ा करते हैं। बचपन की यादें आती हैं, जवानी की यादें आती हैं, कॉलेज की यादें आती हैं, और बस उनके देखकर हम खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको खुश करने का फॉर्मूला जो है हमारे पास है ही, 4028070 पर हम आपसे बातें कर रहे हैं। साथ में 5250-6200 पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। आपके मनपसंद गाने हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हमारे कुछ मनपसंद गाने भी हैं। सो बस अब चलते हैं गाँव ग्रुप की ओर। श्यामा जी, श्यामा रघुनंदन जी हमेशा साथ जुड़ी रहती हैं, और श्यामा जी बैठे बैठे इन गानों को याद कर रही हैं। सो हम लोग मूवी का गाना है, सो ये जाएगा भैया जयप्रकाश के नाम, भाभी नम्रता के लिए, युधिष केशव, साथ में उनकी सहेलियां हैं नंदिनी ओकलू, वीना रामफोल और विश्वानी दुखी। तो बस लता जी की आवाज़ में ये गाना आप सुनिएगा और एंजॉय कीजिए। और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर

0: 12:50 हुए हैं। कहते हैं समय बदल जाता है लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा दिल में रहती हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें, पुराने खत और पुराने जो पोस्टकार्ड, पुराने हेयर स्टाइल को देखकर हमें हंसी आती है ना। अब जब देखते हैं ओ हमने कैसे कपड़े पहने थे, हमने हमारा हमारे बाल कैसे थे, हमारे जो स्टाइल कैसा था, मगर उस ज़माने का स्टाइल और इस ज़माने के स्टाइल में बहुत तो अंतर है ही, मगर अपना अपना समय है। जैसे कहते हैं ना समय समय की बात है, तो हम समय के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोग समय बदल जाता है मगर वे बदलते नहीं, और ये लोग होते हैं तस्वीरों के जैसे, और तस्वीर जो है एल्बम में होती हैं। और आजकल ना जो फोटोज़ हैं वो बस फेड हो जाएंगे, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं उनको पेन ड्राइव में डालकर उनको रख रहे हैं सुवेनियर्स की तरह। सो बस अगर आपके पास ऐसी फ़ोटोज़ हैं, ऐसे पिक्चर्स हैं, ऐसे ख़ास ख़ास जो हैं खत हैं, पोस्टकार्ड हैं, इनके संभाल कर रखिएगा, क्योंकि उनमें ढेर सारा प्यार छुपा हुआ होता है। अब चलते हैं फिल्म आंधी की ओर, 1970 की मूवी, लता जी की शोडा की आवाज़ में। और ये गाना मैंने बहुत दिन हुए हमने नहीं सुना, और आज सुनने का मन किया। तो बस ये किसकी मांग पर है, संगीता जी की मांग पर है, खान खतखत से। और वे अपने बच्चों के लिए जो है बेटा बेटी साथ में जो नाती पोते हैं उनके लिए ये गीत मांग रही हैं। साथ में जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं तो ये गाना आप सबों के लिए, एंजॉय इट। और ये जो गाना है हमें ले जाएगा संक्षिप्त समाचार की ओर। 1 बजे के बाद हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी सुहाना सफ़र प्रोग्राम के अंतर्गत।
1: परसों बाद घूमने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: RM3 Radio. RM3 Radio.
2: Continuous music. RM3.
3: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ. आपको नमस्कार पूजा.
4: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार. अफ्रीका डे के उपलक्ष्य में कल 25 मई के समारोह से पहले आज रविवार को बुबासे में संगठन अफ्रीकन पीपल वॉइसेस संगठन की पहल पर एक प्रतीकात्मक समारोह का आयोजन किया गया. मॉरिशस में पहली बार अफ्रीकी पहचान पान अफ्रीका और आने वाले विश्व में अफ्रीका की भूमिका को समर्पित एक कार्यक्रम के दौरान अफ्रीकी संघ का ध्वज फहराया गया. बोबासे रोजहिल के नए मेयर लुई आंद्रे टुसें बने हैं. वे एमएमएम पार्टी से हैं. शनिवार को नगर पालिका की एक खास बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के नियमों के तहत उनको चुना गया. वे गैब्रिएला बातू की जगह ले रहे हैं. जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर के पद पर बनी रहेंगी, जो रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव पार्टी से हैं. सिटी पापली के रहने वाले लुई आंद्रे टुसें इससे पहले साल 2012 में भी मेयर रह चुके हैं. इस साल गणेश चतुर्थी मॉरिशस में बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाएगा. ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया है. फेडरेशन के मुख्य पुजारी शांताराम राजू ने बताया कि हिंदू पंचांग को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है, जिससे त्योहारों की सही तारीख तय की जाती है. विदेश में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और दूसरे सहयोगी देशों के साथ बातचीत के बाद ईरान के साथ एक शांति समझौता काफ़ी हद तक तय हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार औपचारिक घोषणा से पहले समझौते के अंतिम विवरणों पर चर्चा की जा रही है. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार.
0: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: नंबर 256 होट मिनाजरी काशी में 78 साल के 78 years old श्री प्रीत कुमार बागुबन, श्री प्रीत कुमार बागुबन जिन्हें लोग गोप नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनके बेटे लव कुमार बागुबन के मकान नंबर 256 रूट मेनाजरी काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। और रॉयल रोड लाफ्लोरा में 66 साल के 66 years old श्री देवानंद जोकुआ जिन्हें लोग सुनील नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान रॉयल रोड लाफ्लोरा से उठाकर मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Center 95 95 North South 95.6 95.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: हाँ जी, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। हम हैं, आप हैं और साथ में है प्रोग्राम सुहाना सफर। और साथ में हम कहाँ पर मिलते हैं? RM Free रेडियो मनोरंजन पर। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हाँ जी, सो बस इस तस्वीर में जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच, हमेशा हमेशा के लिए। और जैसे हम जानते ही हैं ना कि संडे का दिन होता है, सभी लोग घूमने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, सफ़र में होते हैं और कुछ लोग घर पर होते हैं। और बिज़ी होने के बावजूद आप लोग समय निकाल कर हमारा साथ देते हैं, दौरे दौरे आ जाते हैं एक कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए। सो तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो सो सो मच। और ऐसे जब आफ्टरनून का समय होता है, जिसे हमेशा कहते हैं ना संडे आफ्टरनून जो है लेज़ी, सुहाना सफ़र का जो मौका है ये है अपने आप को फिर से मिलाने के लिए। अपने आप पर आप लोग सोचें कि हमने किया क्या नहीं किया, लोगों के साथ हमने अच्छा बर्ताव किया या नहीं, हमने किसका दिल दुखाया है, किसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था और किसने हमारा दिल दुखाया है। बस माफ़ कर लीजिए अगर किसी ने आपका दिल दुखाया। सो संडे का दिन है ना, हम बैठ बैठे यही सोचते हैं कि क्या अच्छा हो सकता था ज़िंदगी में, क्या अच्छा कर सकते हैं। तो बस ये संडे ही है ना जब हम अपने आप पर विचार कर सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं। और इसके बाद अभी ना आजकल तो हम मोबाइल लेकर तस्वीरें देखते हैं, हमेशा खाने की तस्वीर खींचते हैं, कहीं घूमने गए बस तस्वीर खींच ली, सेल्फी लेते हैं ना। और पुराने ज़माने में तो सेल्फी नहीं था, बस हमारे हाथ में वो कैमरा होता था, हम फ़ोटो खींचते थे। और कुछ कैमरा ऐसे होते थे जो इंस्टेंटली हमें फ़ोटो दे देते थे, और कुछ कैमरा जो है हमें स्टूडियो में जाकर देना पड़ता था और फ़ोटो बाद में एक सप्ताह बाद मिलता था। और कितनी खुश होते हैं ना होते थे कि हो देखो ना तस्वीरें मिल गई। तो बस तस्वीरों को आप संभाल कर रखिएगा जैसे यादें को आप संभाल कर रखते हैं। और यहाँ पर तो खूब सारी यादें आप सबों के साथ हम हमेशा रखते ही हैं और यादगार गाने। तो हो चुका है 1:17, तो अब चलते हैं एक मैसेज की ओर। हाँ जी,

हाँ जी, बेल्जियम से हमें मैसेज भेजा है प्रकाशवती जी ने, हमेशा के लिए की तरह कहते हैं हेलो देविना जी, हेलो प्रकाशवती जी, क्या खूबसूरत गीत। हाँ जी, सभी गाने तो बेशक का खूबसूरत ही है। बेल्जियम में 23 डिग्रीज हैं, ओ खूबसूरत मौसम, नज़ारा और प्यारे गीत, साथ में टेरस पर ब्रेकफास्ट करना, वाह वाह। प्रकाशवती जी की ओर से, उनके परिवार की ओर से जो बेल्जियम में है, विजय एंटी, बच्चे रवि और सिमी, उनके भैया भाभी, साथ में उनकी प्यारी जो बेटी हैं सुरैया, बहुत प्यार से उनके लिए गाना मांग रही हैं। ऑफ कोर्स हम चलाएंगे, हम चलाएंगे। और ये जो गाना है इसमें एक बहुत ही लता जी की आवाज़ है, फिल्म है मेरी जंग, और इस गाने को आप सुनकर ना कभी हताश मत होइए ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। प्रकाशवती जी, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, द होल टीम हमारे लिए, थैंक यू, और सभी लिसनर्स के लिए। लता जी और साथ में नितिन मुकेश साहब।

जहाँ जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, ये तो भगवान ही जाने, हम तो इंसान है भाई। बस जितने दिन यहाँ पर धरती पर रहना है हमें पता नहीं ऊपर क्या हो, मगर जितने दिन यहाँ पर जिंदा है सो बस सबसे प्यार कर लो, सबसे दोस्ती कर लो, सबके लिए भलाई सोचो, किसी की बुराई मत करो। मगर हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मगर हो ही जाता है। अगर हो गया है कोई

गलतफहमी, कोई गलती, सो बस जैसे हमने कहा है आज संडे है, बैठकर आप सोचिएगा कि क्या हमने अच्छा किया या नहीं किया. सो अगर अच्छा नहीं किया है तो बस उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा. सो ये जो गाना था ना, सो यू गुड आफ्टरनून टू यू टू अनीता जी ऑफ फिकॉन फ्लैग, ये वेरी स्वीट सॉन्ग. वो एक सप्ताह पहले से ही माता को हैप्पी बर्थडे कर रही हैं. वैसे अगले सप्ताह तो मदर्स डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं यहाँ पर मॉरिशस में. सो आई एम श्योर कि जैसे कहते हैं ना, हर रोज़ मदर्स डे हो सकता है, मगर बस ट्रेडिशन ये है कि हम मनाएंगे अगले रविवार को, अगले संडे को. सो अभी से ही बेस्ट विशेज आने शुरू हो चुके हैं. सो खरीदारी हो रही है मदर्स डे के लिए, बस कार्डो ये सब मत खरीद, बस ये न खरीदेगा. मम्मी के लिए प्यार भी होगा, होना चाहिए, और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, ये हम मानते हैं. ठीक है. सो अनीता जी ने ये गीत की फरमाइश की थी मेरी मामा पापा के लिए. ओके, एक ना ये गाना है, फिल्म पुष्पांजलि का गाना था, हमने चला दिया. और सभी को कह रही हैं हैप्पी संडे, तो हैप्पी संडे टू यू टू अनीता जी. अब हैं बाबू अनतवा जी, हमेशा की तरह शॉप में हैं. अभी के लिए उनका अकेले का समय है, मी टाइम है. सो भी सुनना चाहते हैं फिल्म आशिक का गाना, राज कपूर साहब पर पिक्चराइज्ड. तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो. हाँ जी, आप भी अगर हमें सुन रहे हैं, तुम्हारे संग गा लीजिए, संग आप हंसिए, आपकी मुस्कान हमेशा बनी रहे. RM Free रेडियो मनोरंजन पर आप हमेशा हमारा साथ देते रहे. मुकेश साहब की आवाज़ में जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं, ये रहा आपके लिए.

0: RM3 Radio. Radio.
1: ये गाना था बॉम्बू से सुंदर फैमिली की ओर से टू ऑल आरएम फ्री फैमिली ऑफ को थैंक यू सो मच. वे कह रहे हैं आपने आपका नाम हम नहीं जानते, वैसे मैं हूँ देवीना, हर संडे को आती हूँ यहाँ पर आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपका साथ देने के लिए इस खूबसूरत म्यूजिकल सफ़र में. बस सुंदर फैमिली जी यहाँ पर ये जो गाना था फ्रॉम द मूवी जलते बदन. अब एक ऐसे गाने की ओर बढ़ते हैं जो बहुत दिन हुए नहीं सुना. ये फिल्म है बुलेट और लता जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना जाएगा घोंगुप की विमना जी के लिए और उनकी बेटी है याशना, साथ में उनकी बहन है नीरू, नीस है नीजू और साथ में राजेश जी हैं जो हैं उनके जीजा जी और सभी फैंस जो हैं इस गाने के फैंस हैं. सो बस आप यहाँ पर साथ दे रहे हैं तो बस आपको बता देते हैं कि 12 बजे से 2 बजे तक आपकी फरमाइशें हम पूरी कर रहे हैं जो पुराने गाने हैं जो 70s 80s से पुराने, और 2 बजे के बाद

0: आप सुन पाएंगे 2 बजे के बाद, 2 बजे से 3 बजे तक 90s और 90s के ऊपर के स्वीट स्वीट गाने आप सबों के लिए। बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहे एंड आई होप कि आपका जो संडे है वो खुशहाल है, हो रहा है हमारे साथ, आप खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो बस एंजॉय इट। बुलेट लता जी की आवाज़ में, जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे।
1: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब।

ब्यूटीफुल परवीन बाबी साथ में थे, देवानंद साहब और डी बर्मन साहब का संगीत था, जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। बस अब एक और गाना हम चलाएंगे रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये गाना जो है रेहाना जी की पसंद पर, और वे कह रहे आदाब रेहाना जी, और कह रहे हैं फी ये जो गाना आपने चलाया ना हमें जवानी की ओर ले गई, बचपन की याद आ गई। तो बस दिल जवान होना चाहिए रेहाना जी, ये उम्र का क्या है, उम्र तो घटता जाएगा बढ़ता जाएगा, बस हमेशा हम कहते हैं जितने दिन हमें ज़िंदा रहना है बस इस ज़िंदगी को एन्जॉय करते जाना है। और आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी दुआओं के लिए थैंक यू सो मच। और माला फाउडर के लिए ये गाना मांग रही है, माला फाउडर जी आप हमें सुन रही हैं थैंक यू, आप जहाँ भी हो, घर पर हो या कहीं भी, और रेहाना जी बस इस गाने पर झूमिए गाइएगा हमारे साथ, दिल अपना और फिर पर आई जाने कहाँ गई।

रफी साहब की मदमस्त आवाज में ये जो मदमस्त गाना है साजिद जी के नाम जाता है और रोजिर गोरे हाथों में और वे कह रहे हैं लंच टाइम है मगर वे चाय पी रहे हैं और हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू साजिद जी, एंजॉय इट. फिल्म है हमने प्यार किए जा.

आशिकी का बेहद ही प्यारा सा गाना कुमार सानू साहब की आवाज़ में ये जाएगा के मनोज सोहन जी के लिए, साथ में स्वीट वाइफ नजीमा के लिए। और वे कहते हैं दिल का रिश्ता है उनका गया सिंह आश्रम के रेजिडेंस के साथ। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग घर पर हैं और बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मगर हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमेशा उनको ढेर सारा प्यार और बस जिंदगी को एंजॉय कीजिए। और ये जो गाना है ले जाएगा हमें दुबई जी के समाचार की ओर। मनोज जी, नजीमा जी, दीजिए आपका गाना।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ। आपको नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। आज पेंटेकोस्ट पर्व मनाया जा रहा है। पोर्ट लुइस डायोसिस द्वारा रोज हिल स्थित सेंट मेरीज कॉलेज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। पोर्ट लुइस के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जोरोन ने इस समारोह के महत्व पर बात की। प्रार्थना सभा दिन के 2:30 बजे निर्धारित है। पोर्ट लुइस स्थित अल्फा कॉलेज ने पूरे किए 60 साल। छोटे आकार और सीमित छात्र संख्या के बावजूद ये संस्थान हर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का स्वागत करता है बिना उनकी क्षमताओं का आंकलन किए। यहाँ विशेष ध्यान व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र को सफल होने का एक वास्तविक दूसरा अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रगति का प्रमाण ये है कि पूर्व एक्सटेंडेड प्रोग्राम के कई विद्यार्थी आज अपनी शैक्षिक यात्रा आगे बढ़ा रहा है। अफ्रीका डे के उपलक्ष्य में कल 25 मई के समारोह से पहले आज बुबासे में अफ्रीकन पीपल वॉइस नामक संगठन की पहल पर एक प्रतीकात्मक समारोह का आयोजन किया गया। मॉरिशस में पहली बार अफ्रीकी पहचान, पैन अफ्रीकनवाद और विश्व में अफ्रीका की भूमिका को समर्पित एक कार्यक्रम के दौरान अफ्रीकी संघ का ध्वज फहराया गया। विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और अन्य सहयोगी देशों के साथ बातचीत के बाद ईरान के साथ एक शांति समझौता काफ़ी हद तक तय करने की बात कही है। ट्रंप के अनुसार औपचारिक घोषणा से पहले समझौते के अंतिम चरणों पर बात की जा रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: नंबर 256 रूट दे मेनाजरी कासिमे 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्री प्रीत कुमार बागुबन, जिन्हें लोग गोप नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनके बेटे लव कुमार बागुबन के मकान नंबर 256 रूट मेनाजरी कासी से उठाकर ले सालीन किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: You're listening to RM3 Radio. My

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जहाँ 2:12 आप सभी को सलाम, फिर से नमस्कार, प्रणाम, और लेकर आ गए हैं आज का ये तीसरा घंटा जो है सुहाना सफर प्रोग्राम का, और डेडिकेटेड टू द 90s एंड 90s के ऊपर के गाने आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं 3 घंटों से। बस तीसरे घंटे में प्यार भरे नगमे, जैसे कहेंगे ना, उस समय 90s के ज़माने में ना सोशल मीडिया था ना स्मार्टफोन, फिर भी दिल जुड़ जाते थे, क्योंकि 90s में रिश्ते भी सच्चे थे और गाने भी दिल से बनते थे। और याद है ना, 90s में हम वॉकमैन का प्रयोग करते थे, वॉकमैन लेकर उन्हें गाने सिलेक्ट करके डालते थे और जहाँ भी जाते थे हम लेकर जाते थे। होई होई वो कैसेट का ज़माना, वो जैसे कहते हैं ना, उसका उनका कम्बिनेशन होता था, हमें वो गाना अच्छा लगता था, वो गाना अच्छा लगता था, हम नोट करके उन गानों को उन कैसेट में भर देते थे, सीडीज में भरते थे, वॉकमैन लेकर चलते थे, और कैसेट पेंसिल से रिवाइंड होती थी, और हर गली, हर बस, हर शादी में 90s के गीत गूंजते थे। क्या आपको वो ज़माना याद है? तो अगर याद है तो बस सारे चलेंगे आपको उन गानों की ओर जहाँ पर ऐसे गाने चलते हैं। और ये जो गाना है एक्चुअली अराउंड द 90s ही है, फिर लहराए लाल दुपट्टा, इससे पहले आया था लाल दुपट्टा मलमल कम के गाने, वाह क्या बात है, और इसके बाद फिर लहराया लाल दुपट्टा, तुमने रख तोली तस्वीर हमारी, गाना याद है ना आपको? बस ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे किसको? वैसे किसी ने हमसे कहा है, उमा जी, उषा जी हैं ब्रह्मस्थान से, कह रही है, हेलो देवीना जी, हेलो जी, हम भी सवेरे से सुन रहे हैं और घर का काम कर रहे थे करते हुए, तो बस ये जो गाने हैं हमारा थकान कम करने के लिए, प्लीज़ बस ये गाना अब नहीं चला पाएंगे उमा जी, क्योंकि अब तो 90s की ओर बढ़ चुके हैं, तो ये गाना भी आप सुनिए और इसको आप एंजॉय कीजिए।

0: ना सफर, हाँ ना सफर।
1: और बस ये गाना जाएगा चंदनी जी के लिए, तुमने रख डोली बस।

जा बस एक छोटी सी पोएम है, याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसे दो जो इरादे का पक्का हो, दिल उसे दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। मोराबिया की अनिता जी वाह वाह, करुणा जी के लिए, अमृता के लिए, साथ में दोस्तों के लिए। फिल्म है खत्ता मीठा, सिंगर के सुनिधि चौहान और सॉन्ग है सच देख ये है। हाँ जी अनिता जी, हमेशा की तरह आपके पोएम के लिए थैंक यू सो मच। आप जैसे हम हैं यहाँ पर शब्दों से खेलते हैं और बस गानों के शौकीन हैं, तो जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं आप सबों के नाम हम करना चाहते हैं। फिल्म खत्ता मीठा, सुहाना सफ़र, आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर।

2:32 हुए हैं। हम्मा हम्मा हम्मा है जी। रिमो फर्नांडिस की आवाज़ में ये था ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द मूवी बॉम्बे। और उस समय ना ये गाना इतना चला था कि क्या कहें, आज भी ये गाना इतना मशहूर है। और फिल्म बॉम्बे बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था, इसमें नज़र आई थी ब्यूटीफुल मनीषा कोइराला, साथ में थे अरविंद स्वामी। 90s यानी रोमांस, 90s यानी कुमार सानू की आवाज़, उदित नारायण की मुस्कान, अर्का याग्निक की मिठास, नदीम श्रवण का जादू, रेमे फर्नांडिस का धमाकेदार गाना और साथ में प्यार भरी मुस्कान, प्यार भरा दिल, ये था 90s का जादू। और ऐसे में किसी ने हमें मैसेज भेजा है, क्या जमाना था। हाँ जी, बहुत हाज देवी नाजी, थैंक यू सो मच लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल शो फ्रॉम ट्रियोले, सूरज शर्मा सजदा। थैंक यू सूरज जी साथ देने के लिए। बस अगला गाना आपके नाम करने वाले हैं और फिल्म है वक्त हमारा है। अब ये वक्त हमारा ही है क्योंकि वक्त पता नहीं कब हाथों से छूट जाए, जो है बस आज है, अभी है, तो इसको इसमें जी जान से, जी जान भर दीजिए और इसको जी ले प्यार से। और वैसे 90s के गाने जो हैं इनकी बात अलग ही हैं। उस दौर के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे, हर अल्फाज को याद किया जाता था। स्कूल की फेयरवेल पार्टी हो, पहला प्यार हो या बारिश में भीगती यादें, हर एहसास का एक 90s सॉन्ग ज़रूर है। आपके पास भी कोई गाना है ना 90s का, तो बस गुनगुना लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल हम पेश कर रहे हैं कुमार सानू साहब की प्यारी सी आवाज़ में, साथ में अलका याग्निक भी है। तुमको देखा रोगे जी हाँ, सुनील शेट्टी साहब साथ में थे, ब्यूटीफुल ममता कुलकर्णी। सो बस ये गाना जाएगा हरीश बाबू के नाम, और वो बस हैं हरीश बाबू जी, हैप्पी संडे टू यू, साथ में ब्रह्मस्थान की उषा जी, हमने इनका नाम ले लिया है, फिर से ले रहे हैं अभी, और जितने लोग 90s के फ़ैन हैं। और इसके बाद एक और गाना होगा, ये जाएगा विमला जी के लिए फ्रॉम द मूवी साजन। सो बस एंजॉय इट, हैप्पी संडे टू यू ऑल, सुहाना सफ़र ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन, देवीना के संग।

0: RM3 Radio. Radio.
1: विमला जी और शुभम गए ये गाना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और साथ में ये गाना जाएगा आपके लेट पति चांद की याद में। बस जिए तो जिए कैसे जी।

बबचकर 37 मिनट। दोस्तों 90s के हीरोज भी कमाल के थे और वे कम किसी से कम नहीं थे। शाहरुख खान का रोमांस, सलमान खान का स्टाइल, आमिर की इनोसेंस और गोविंदा का डांस, उस पर 90s में उनका जादू छा ही गया था। और मिलेनियम में आते आते, 2000 में आते आते इन हीरोज के काम भी लोगों को अच्छा लगा। अगर हम कहें सलमान खान तो मैंने प्यार किया से शुरू किया, इसके बाद कितने फिल्म्स आए, पत्थर के फूल, इसके बाद और काफ़ी जो मूवी थे जिनके साथ उनके साथ काफ़ी कलाकार भी मल्टी स्टार मूवी में भी उन्होंने काम किया। और 2000 में आते आते उनकी जो बॉडी भी चेंज हो गई, उनका एक्टिंग भी चेंज हो गया, मगर जो उनको अच्छा लगा ऑडियंस को, उनका स्टाइल, उनके डांस करने का स्टाइल, उनकी जैसे कहेंगे ना, तो अगर आपको कहें दबंग, तो दबंग आई थी 2010 में और उस फिल्म का सीक्वल भी बना दबंग, और इसमें आई थी सोनाक्षी सिन्हा उनके साथ, दबंग वन के बाद दबंग टू। और दबंग वन के जो गाने थे कमाल के थे, आज भी लोगों को अच्छा लगता है। तो उसमें जो आवाज़ें सुखविंदर सिंह साहब, सोनी निगम साहब, साथ में श्रेया घोषाल जी, सो बस एक गाना हो जाए। और ये गाना एक्चुअली मांग की है यहाँ पर, नमस्ते जी, यह है सरिता कटबोन, एक फरमाइश है फिल्म दबंग का गाना। और साँची साँची तेरी खुशबू एक दर्पण, हाँ जी, क्या कमाल का गाना है ना, रोमांटिक गाना। और ऐसे गाने ना आज भी महफिलों में, शादी में, शादी से लेकर रोड ट्रिप तक जब सफ़र करते हैं तो ये गाने जब बजते हैं तो जैसे मन गदगद हो जाता है, मन खुश हो जाता है। तो ऐसे गाने रोज़ सुनने का मन करता है। तो सुनील निगम साथ में श्रेया घोषाल, और इसी के साथ हम कहेंगे आपको आपके साथ के लिए धन्यवाद। और ये जो आफ्टरनून है इमोशनल हो गया है, रोमांटिक हो गया, तो वो संडे की फिल्में, वो ऑडियो कैसेट शॉप्स, वो रेडियो पर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना, क्या खूबसूरत दौर था। और आज टेक्नोलॉजी फास्ट है लेकिन 90s का दिल आज भी सबसे क्लासी है, 2000 वाले गाने भी आज सबसे क्लासी हैं। तो बस यही कहेंगे आपको कि वक्त हो चला है विदा लेने का, और 70s 90s ऊपर के गाने आपको पसंद आए होंगे हमेशा की तरह, दिल में जैसे कसक सी रह गई है ना, दिल में खुशी की लहर भी छाई हुई है। सो हम आशा करते हैं कि जो आफ्टरनून है अब आपके लिए खुशगवार हो, आप अच्छी तरह से चाय का वक्त है, चाय पीजिए, हमारे गाने सुनिए। और 3 बजे के बाद ऐसा हो भी होता है प्रोग्राम लेकर आएंगे अजय प्रताप सिंह, और बाकी जो प्रोग्राम है इनमें साथ दीजिएगा हमारा और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और कहते हैं ना, कुछ ढूंढे जो हैं वक्त के साथ नहीं बदलती क्योंकि वो दिल में बस जाते हैं। सुबह मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71

0: 1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाता है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने के लिए एक नई पद्धति शुरू की है जिसमें 2 संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। अफ्रीका डे के उपलक्ष्य में कल 25 मई के समारोह से पहले आज बोबासे में अफ्रीकन पीपल वॉइस नामक संगठन की पहल पर एक प्रतीकात्मक समारोह का आयोजन किया गया। मॉरिशस में पहली बार अफ्रीकी पहचान पैन अफ्रीकनवाद और विश्व में अफ्रीका की भूमिका को समर्पित कार्यक्रम के दौरान अफ्रीकी संघ का ध्वज लहराया गया। आज पेंट कोस्ट का पर्व मनाया जा रहा है। पोर्टलिस डायोसिस द्वारा रोज हिल स्थित सेंट मेरीज कॉलेज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। पोर्टलिस के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जुरोन ने इस समारोह के महत्व पर बात की और एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। पोर्टलिस स्थित अल्फा कॉलेज ने पूरे किए 60 साल। सीमित छात्र संख्या के बावजूद ये संस्थान हर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का स्वागत करता है बिना उनकी क्षमताओं का आंकलन किए। यहाँ विशेष ध्यान व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र को सफल होने का एक दूसरा अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रगति का प्रमाण ये है कि पूर्व एक्सटेंडेड प्रोग्राम के कई विद्यार्थी आज अपनी शैक्षिक यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। विदेश में 2 मई से शुरू हुए कैन फिल्म फेस्टिवल का शनिवार देर रात समापन हुआ। 2026 का कैंस फिल्म महोत्सव का समापन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा के साथ हुआ। समापन समारोह में प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई निदेशक पार्क चान वूक की अध्यक्षता में मुख्य पुरस्कारों के निर्णायक मंडल ने सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की। महोत्सव का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाल्म दो रोमानियाई निर्देशक क्रिश्चियन मेंगुई की फिल्म जोड को मिला। ग्रैंड पिक्स रूसी निर्देशक एंड्रू की फिल्म मिनाटो को दिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। वन शक्ति माता मंदिर वन शक्ति माता स्ट्रीट पिचिबेलिया में 77 साल की 77 years old श्रीमती देवंती देवलोल पैदाशी नाम पूरन और जिन्हें लोग माता जी देवी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ ही कल दिन के एक बजे इनके पति बिसुंदियाल देवलोल के मकान वन शक्ति माता स्ट्रीट पिचिबेलिया से उठाकर पिचिबेलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। गंगा दुलेन अपवेल में 47 साल के 47 years old श्रीमती अल्विना गंगादू पैदाशी नाम अपादू और जिन्हें लोग अल्विना नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ कल सुबह 9:30 बजे इनके पति सुबी गंगादू के मकान गंगादू लेन अपवेल से उठाकर बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9:30 AM। लातापी रोड बोनाकोई में 60 साल के 60 years old श्री सूरजानंद घुमारिया जिन्हें लोग सूरज नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ ही कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी सुनीता घुमारिया के मकान लातापी रोड बोनाकोई से उठाकर लातापी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। और रामा रोड शामुनी में 79 साल के 79 years old श्री बसंत तायब जिन्हें लोग मोती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके बेटे सत्यन तायब के मकान रामा रोड शामुनी से उठाकर कांगोपा शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM3 Radio।

इंसान क्या से क्या हो गया, वो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। उसके दिमाग में क्या है, उसकी नीयत में क्या है, कौन जानता है। हर क्षण हर पल उसका मन और दिमाग बदलता रहता है। बड़ा ही चंचल है मनुष्य, बड़ा ही विचित्र है मनुष्य, कौन इसे समझाए। जो समझाना चाहता है वो उन्हें समझा ना पाएगा। प्रस्तुत है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह से तालु का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वेलकम टू माय शो ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। साथ में आप हमें टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं, हमें देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। जी हाँ, अद्भुत सनसनी खबरों का पिटारा खोलने वाले हैं और अजीब और अजीब गरीब खबरें हम लाई हैं आप लोगों के लिए अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन।

दुनिया में बहुत सारे कल्चर है और हर कल्चर का अपना ट्रेडिशन होता है। जैसे कि चाइना या जापान में जाएंगे तो सांप को भोजन के रूप में उसे देखा जाता है, सांप की तरकारी बनती है, सांप की सूप बनती है, और वही सांप इंडियन कल्चर में उसे पूजा जाता है। जी हाँ, अगर आप भारत में जाएंगे तो लोग नाग देवता नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध अर्पित करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कल्चर। एक कल्चर में अगर एक चीज़ को खाया जा सकता है तो दूसरे कल्चर में उसकी पूजा हो सकती है कि नहीं। बहुत ही अद्भुत है ये दुनिया, कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए एक सांप को यहाँ पर मॉरिशस में हम देखते हैं कि अगर सांप किसी घर में आए तो लोग उसे मारने दौड़ते हैं, झाड़ू से या जूते से लोग डरते हैं सांप से। पर भारत में बहुत से ऐसी जगह है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सांप को पूजा जाता है, सांप को नाग देवता के नाम से जाना जाता है। पर इसी नाग देवता को चाइना में कढ़ाई में उसे पकाया जाता है, उसका सूप बनता है, उसकी तरकारी बनती है, लोग बहुत प्यार से उसे खाते हैं। सो दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन कल्चर, कल्चर एंड पीपल, है ना। शायद जो चीज़ हम नहीं खाते दूसरे कल्चर में लोग उसे खाते होंगे, ये तो कल्चर कल्चर की बात है कि नहीं। दुनिया में ऐसा भी होता है। सो अगली बार

कड़ाही में उसे पकाया जाता है, उसका सूप बनता है, उसकी तरकारी बनती है, लोग बहुत प्यार से उसे खाते हैं। सो दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन कल्चर, कल्चर एंड पीपल, है ना। शायद जो चीज़ हम नहीं खाते दूसरे कल्चर में लोग उसे खाते होंगे, ये तो कल्चर कल्चर की बात है कि नहीं। दुनिया में ऐसा भी होता है। सो अगली बार

बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और दुनिया बहुत बुरी है। समय के साथ दुनिया के लोग और भी बुरे होते जा रहे हैं। किसी के दिल में दया क्षमा की भावना है ही नहीं। जीसस क्राइस्ट जिस व्यक्ति को लोगों ने छोड़ा तो क्या लोग हमें छोड़ेंगे। जीसस क्राइस्ट जो मसीहा से मसीहा माना जाता है उसने इंसानियत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। क्या कुछ नहीं किया इंसान के लिए उसने, पर उसी को क्रॉस पर सूली पर चढ़ा दिया गया। जुदास जो एक धोखेबाज था उसने जीसस को सूली पर चढ़ा दिया और उसे लहू लुहान कर दिया। जीसस का कसूर क्या था? उसने हमेशा इंसानियत की मदद की, हर किसी की सहायता की, भूखे को खाना दिया, प्यासे को पानी दिया, ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य प्रदान किया। उसके बदले क्या मिला? लोगों ने उसे मार डाला। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कभी कहते कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, पर क्या यहाँ पर अच्छे के साथ अच्छा हो रहा है? जीसस क्राइस्ट के उदाहरण को लेते हैं, कितना कुछ नहीं किया मनुष्य के लिए, मानवता के लिए, पर बदले में क्या मिला? लोगों ने उसकी जान ले ली। इसे कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में अच्छा होना चाहिए, इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि लोग आपको दबा के रख दें।

दोस्तों भारत कैसा देश है जहां पर हर चीज की पूजा होती है आसमान से लेके धरती तक धरती से लेके वनस्पति तक पेड़ पक्षी पशु सब की पूजा होती है और आसमान को देवता माना गया है धरती को मां मानते हैं तुलसी को भी मां मानते हैं तुलसी के पौधे को शुभ माना जाते हैं और तुलसी की पूजा होती है तुलसी को जल अर्पण करते हैं तो भारत की जो ट्रेडिशन है जो कल्चर है बहुत बड़ा है बहुत विशाल है इसे वहाँ पर हर चीज़ की पूजा की जाती है यहाँ अन्न को अन्नपूर्णा देवी कहते हैं और जिसमें भोजन तैयार करते हैं उसे हम अग्निदेव कहते हैं सो भारत का कल्चर ही ऐसा है कि और इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि हम क्यों पूछते हैं अग्नि को अग्नि देवता कहते हैं क्योंकि अग्नि देव सबको पवित्र करता है अग्नि में हम खाना बनाते हैं और वही अग्नि जब अंत समय में हमारा अंत होता है तो इस अग्नि में इंसान को जलाया जाता है सो अग्नि को देवता कहा गया है अग्नि को पुरोहित कहा गया है और अग्नि जब हम जलाते हैं घर में तो वो घर को शुद्ध करता है सो एक दिन अगर मौका मिले आपको भारत जाने के लिए तो जाइएगा ज़रूर और सीखेगा वहाँ पर कैसे हर चीज़ की पूजा होती है

हम ऐसे बहुत से लोग मंदिर पूजा पाठ करने जाते हैं यह पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर पाया जाता है इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर पाया जाता है कंबोडिया में और इस मंदिर का नाम है हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स अंकोर वाट और इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था पहले यह विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर था बाद में बुद्धिस्ट मंदिर भी बना यह लगभग 400 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है इसकी सुंदर नक्काशी और भव्य आर्किटेक्चर दुनिया भर में मशहूर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सो अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो टाइप कीजिए द बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इन कंबोडिया CAMBODIA तो आप देख पाएंगे कि वह मंदिर कितना बड़ा है कितना विशाल है और कितना सुंदर भी है और मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएगा कंबोडिया में उस मंदिर का दर्शन करने के लिए

0: Just chill.
1: दुनिया में जब हम ओशन की बात करते हैं, सागर की बात करते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है पैसिफिक ओशन। जी हाँ, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच स्थित है। इसका क्षेत्र लगभग 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ये धरती के कुल जल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा

कवर करता है। दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच भी इसी सागर में है। पैसिफिक ओशन में हजारों द्वीप आइलैंड्स हैं और बहुत ही विशाल है। सो यूट्यूब पर जाइए, टाइप कीजिए पैसिफिक ओशन, तो आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा, कितना विशाल है यह पैसिफिक ओशन। और हम मॉरिशस वासी, हम इंडियन ओशन में रहते हैं, यानी कि मॉरिशस चारों ओर से पानी से है, चारों ओर पानी है, बीच में छोटा सा टापू है जिसका नाम मॉरिशस है। क्या बात है,

बढ़ती महंगाई को देखकर बहुत से ऐसे देश है जहां पर लोग या तो शादी नहीं करते हैं या बिन शादी की एक साथ जीते हैं। इसको हम कोंकबिनाश कहते हैं, यूनियन लिप कहते हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस। तो यहाँ पर या तो लोग शादी नहीं करते या देर से शादी करते या बिन शादी के एक साथ रहते हैं। और बिन शादी के एक साथ रहना मतलब लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। करियर और पढ़ाई को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं और फिर एक साथ रहते हैं 5-6 साल बाद पति पत्नी के रूप में विदाउट गेटिंग मैरिड। और कुछ जगहों पर ये लोग बच्चे भी पैदा नहीं करते क्योंकि कहते हैं कि महंगाई इतनी है तो बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे का पेट कैसे पालेंगे। सो याद रखिएगा, ये देश जहाँ पर लोग लिविंग रिलेशनशिप में ज़्यादा रहते हैं या बच्चे कम पैदा करते हैं या शादी करते नहीं हैं, वो देश है स्वीडन, नॉर्वे एंड फ्रांस।

One of the best tunes of the yesteryears, Janam Sam Chakaru title track, Hema Sardi Sayanu Malik ki awazon mein. इस गीत के साथ ही अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है यहीं पर समाप्त होने जा रहा है याद है 6-4 बजे होगा फ्लैश न्यूज़ के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी नगमे हमारी आपकी मुलाकात होगी आज रात के 9 से 11 बजे रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में रात तक हमें दीजिए इजाजत और जय प्रताप सिंह से तालुक की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार लव यू ऑल गॉड ब्लेस सी यू एट 9 PM ऑन MBC रेडियो

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Continuous music.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: इसमें शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार
6: संजय। श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाते हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने की दिशा में एक नई पद्धति भी शुरू की है, जिसमें दो संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। आज पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया जा

0: जा रहा है पोटली गिरजा घर द्वारा रोजिल स्थित सेंट मेरीज कॉलेज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था। पोटली के बिशप मोंसिग्नियर जॉन मिकाएल जुरोन ने इस समारोह के महत्व पर बात की। आपको बता दें कि आज दोपहर के 2:30 बजे तक प्रार्थना सभा लगाई गई। आज शाम से हज की बकायदा शुरुआत होगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हज मक्के से मीना की तरफ जाएंगे। इस शहर से हज के मराहिल शुरू होंगे। सबसे अहम दिन मंगलवार को यौमेन अराफात होगा, जहां हाजी को ए अफ अराफात पर जमा होकर इबादत और दुआओं में अपना दिन गुजारेंगे। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। उधर कैलिफोर्निया में एक केमिकल फैक्ट्री के खराब वाल्व ने लाखों जिंदगियों और 6 शहरों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। ऑरेंज काउंटी की इस फैक्ट्री से मिथाइल मेटाक्राइलेट नाम के बेहद खतरनाक और आग पकड़ने वाले केमिकल का रिसाव हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर होते हुए प्रशासन ने बिना वक्त गवाए लगभग 40,000 लोगों को तुरंत अपने घर खाली करने का सख्त आदेश जारी किया है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। वन शक्ति माता स्ट्रीट पिचिबिलिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवंती देवलल पैदाश नाम पूरन और जिन्हें सब लोग माता जी देवी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री बिसुनदियाल देवलल के घर वन शक्ति स्ट्रीट पिचिबिलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचिबिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड एक्वायो में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री दयादत्त राजवंती जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के घर रॉयल रोड एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। ऐसे भी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

गजल का एक और दौर शुरू होता है, पंजाबी गायकी का दौर, जिसमें नॉलेज ऑफ म्यूजिक उभर के आता है, वो है गुलाम अली का दौर। गुलाम अली की गजल में आप देखेंगे कलाम के साथ साथ उनका जो नॉलेज ऑफ म्यूजिक है, उनका जो रियाज है, उनकी जो सरगम है, उनकी जो मुर्कियां हैं, उसका भी उतना ही इस्तेमाल वो करते हैं जितना वो अच्छे कलाम से करते हैं। सुनने वाले के लिए बहुत ही इंजॉयमेंट वाली चीज़ है, और खास करके मैं तो इसे बहुत पसंद करता हूँ।

0: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 4:13 हो चुके हैं। जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं और सिर्फ दर्द का भी नहीं। कभी कोई हंसते हंसते दिल में उतर जाता है और कभी वही इंसान चुपचाप एक याद बन जाता है। आज की फिल्मी गजलों में थोड़ी मुस्कुराहट भी होगी, थोड़ी सी तन्हाई भी, कुछ अधूरे एहसास और कुछ खूबसूरत यादें। मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए दिल की इस बारिश में साथ भीगते हैं, साथ चलते हैं।
1: RM3 Radio.

4:20 हो चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे थे नज़मा की आवाज़ में कितने बदल गए हैं। कितना अच्छा लगता है ये जब हम गज़लें सुनते हैं और एहसास होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितने सुख और दुख हैं, और शायद ये गज़लें ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही शांत कर देती हैं। कितनी भी उथल पुथल हो, बट दुनिया के किसी जगह से निकल के जब हम ये गज़लें सुनते हैं, नज़में सुनते हैं, शेर सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, तब एहसास होता है हाँ, अगर कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आई हों, पर ज़िंदगी में एक बार नज़्म या कोई गज़ल चलती है तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल धर्रे पर आकर आसानी से हमारी ज़िंदगी को ठीक कर देती है। तो चलिए बात करते हैं, हमारे में एक बहुत ही प्यारे शायर हैं, उनका नाम है तहजीब हाफी। शायरी में लिखते हैं, तुम्हारे हंसने से लगता है घर में

0: रोशनी रहती है, तुम्हारे हंसने से लगता है घर में रोशनी रहती है, वरना इस दिल को तो खामोश रहने की आदत थी। दोस्तों सच बात है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में खुशी बनकर तो आते हैं और फिर उनकी हंसी भी हमारे दिन का और दिल का हिस्सा बन जाती है। ये गज़ल आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: गजल।
1: 4:29 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में हर शमा बुझी रफ्तार रफ्तार। क्या बात है, ये ऐसी नज़्म, ऐसी गज़ल जो होती है वो एक बार सीधा दिल के ऊपर टच करती है और बस इतना ही कहती है कि मैं हूँ आपके साथ, क्यों फ़िक्र करते हो। और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे शायर जब जुड़ते हैं और उनकी बातें याद आती हैं, उनकी लिखी हुई वो बातें जो कि हमें एक नॉर्मल इंसान को नहीं सुनने को मिलती और या वो सोच नहीं पाते किस तरीके से लिखी जाती है। देखिए आप कि नौशी गिलानी जी लिखते हैं, तो मिला तो लगा जैसे खुद से मुलाकात हुई, तो मिला तो लगा जैसे खुद से मुलाकात हुई, वरना इस भीड़ में हम खुद भी खुद से दूर थे। सच्ची मोहब्बत शायद नहीं, ये वही होती है जहाँ हमें अपना असली चेहरा मिल जाता है, हमें अपना वो इंसान मिल जाता है जिसको चाहते हैं और बस लिखा होता है ज़िंदगी में कि काश वो हमारे सामने रहे और हमसे बात करे। और बस इसी मुलाकात में और इन बातों में तभी लिखी जाती हैं ऐसी नज़में और ऐसी गज़ल। और जब बोली जाए चित्रा की आवाज़ में तो वो बात और खूबसूरत हो जाती है। तो सुनते हैं चित्रा जी की आवाज़ में ये गज़ल।
0: RM3 Radio.

4:35 हो चुके हैं और हम सुन रहे हैं फिल्मी गजलें और मैं हूं आपके साथ पूनम। बहुत ही प्यारे एक शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा, जिनका नाम है फरहाद एहसास। कुछ बातें दिल में रखनी पड़ती हैं, कुछ बातें दिल में रखनी पड़ती हैं।

हर बात कहीं नहीं जाती, मोहब्बत भी अजीब चीज है, हर किसी से निभाई नहीं जाती। आपने नोटिस किया होगा कि सबसे गहरे रिश्तों में भी शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, और जब कम पड़ जाते हैं तो एहसास होता है सच में हम उस इंसान से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी इश्क करते हैं, कितना ही प्यार करते हैं कि हमारे पास शब्द भी नहीं है उसको एहसास जताने के लिए कि हमारे पास उसके लिए कितना प्यार भरा है दिल में।

0: आप सुन रहे थे पंकज उदास और तलत अजीज साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारी सी गज़ल जिंदगी जब भी तेरी नज़्म में। तो ये ज़िंदगी की ऐसी ही कुछ हरकतें होती हैं जो हमारे को बहुत पास ले आती हैं हकीकतों के। एक्चुअली जो हमारी ज़िंदगी होती है बहुत हकीकत से दूर होती है। कई बार हम चाहते ही नहीं कि हमारे सामने वो पर्दा उठे, वो चीज़ सामने आए जिसको हमें नहीं देखना। तो चलिए भाई, एक बहुत ही प्यारी हमारे साथ में एक शायरा है, उनका नाम है प्रवीण फना सैयद। लिखती हैं, तेरा नाम आज भी दिल को सुकून देता है, तेरा नाम आज भी दिल को सुकून देता है, हालांकि तू अब मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं। सच बात है दोस्तों, कुछ रिश्ते सच में कभी ख़त्म नहीं होते, इंसान साथ नहीं रहता है, लेकिन उसका एहसास दिल में कहीं ठहर सा जाता है और फिर अचानक किसी गाने से, किसी नज़्म से, किसी गज़ल से, किसी मौसम में या किसी की छोटी सी बात में वो फिर से याद आ जाता है। और वो हर पल जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि काश ये समय, ये दिन, ये पल ये यहीं ठहर जाए, कहीं ये दूर ना हो। तो यही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से हमें हमारे सामने लाती है। ये है आपकी वो प्यारी सी अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में, वो खजाना कह सकते हैं जो ये गज़ल आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों, कुछ लोग कुछ यादें और कुछ एहसास कभी पूरी तरीके से ज़िंदगी से जाते नहीं। आज किन गज़लों में अगर आपको भी कोई अपना कोई हिस्सा मिला हो तो उसे दिल से संभाल कर रखिएगा। मुझसे पहले आपके साथ थे प्रताप जी जो अपने प्रोग्राम के साथ थे, और मेरे बाद आने वाले हैं शीतल जी अपने प्रोग्राम के साथ। तो बने रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं थी आपके साथ पूनम। नमस्ते, आदाब, और अपना ख्याल रखिएगा। ये आखिरी नज़्म आप सबके लिए मिताली की आवाज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ठीक है।
1: RM3 Radio.

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें
5: शब्बीर कुमार भारतीय संगीत के एक ऐसे कलाकार रहे जिनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेंगी प्यार करने वालों के दिलों हमेशा उनके गाने धड़कते रहेंगे शब्बीर कुमार पर आधारित ये दूसरी कड़ी यादें प्रोग्राम फिल्म बेताब 1983 में ये फिल्म आई थी डेब्यू मूवी रही

सनी देओल और अमृता सिंह की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर म्यूजिकल सक्सेस। शबीर कुमार के सभी गाने लोगों को बेहद पसंद आए। राहुल डे बर्मन ने संगीत दिया। सनी देओल को फिल्म बेताब से बहुत सफलता प्राप्त हुई और उस सफलता के पीछे ये भी कह सकते हैं कि शबीर कुमार की आवाज थी।

शबीर कुमार ने फिल्मी दुनिया को कुछ 3,700 गाने दिए। बतौर प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्मफेयर ने उन्हें नॉमिनेट भी किया। एक बहुत ही इमोशनल गाना रहा तुमसे मिलकर, फिल्म प्यार झुकता नहीं।

शबीर कुमार की आवाज में एक ऐसी खिंचाव रही जो कि हर जवान दिल की धड़कन बन गए शबीर कुमार की आवाज, एक अनोखी आवाज। ये रही शबीर कुमार की, हर जज्बात को बड़े शान से पेश करते थे। हैरान हूँ मैं आपके जुल्फों को देखकर। शबीर कुमार के साथ आवाज मिलाई अनुराधा पोटवाल। फिल्म आई थी 1987, जवाब हम देंगे, जहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया।

जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक बेहद ही मशहूर गाना। फिल्म मेरे जंग 1985 में ये फिल्म आई थी। एक ऐसा गाना है जो कि आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना उस दौर में रहा।

अपने दौर के लगभग सभी महान कलाकारों के आवाज बने शब्बीर कुमार साहब, अमिताभ बच्चन हो, सनी देओल हो, ऋषि कपूर हो और वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी इस लिस्ट में शामिल रहे। प्यार छुपता नहीं, प्यार के दो पल, एक बेहद ही इमोशनल गाना, फिल्म गुलामी, कलाम गुलजार साहब के रहे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गाना इतना खास रहा कि आज भी इस गाने के रिमेक किए जाते हैं।

अमिताभ बच्चन और शबीर कुमार की जोड़ी अनेकों फिल्मों में एक साथ चलते गए। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। 1990 में फिल्म आई थी आज का अर्जुन। संगीतकार रहे बप्पी लहरी साहब।

संगीतकार के साथ शब्बीर कुमार सफलता की ओर आगे बढ़ते चले गए और बदलते दौर के साथ भी बप्पी लहरी के साथ काम किया और अपने आवाज के जादू से लोगों को दीवाने करते गए। उस दौर के एक नए कलाकार रहे चंकी पांडे, उसके लिए भी उन्होंने प्लेबैक दिया और आवाज मिलाई शब्बीर कुमार ने आशा भोसले के साथ।

फिल्म एक जान है हम। इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे रहे जो कि हमेशा याद किए जाएंगे। क्या प्यार के खूबसूरत अफसाने हो या दर्द भरी दास्तां हो, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। एक जान है हम 1983 में ये फिल्म आई थी।

हर एक एहसास को पेश करना कोई शब्बीर कुमार से सीखे। संगीत के मंच से धीरे धीरे शब्बीर कुमार दूरी बनाने लगे, अपने खुद की पहचान बनाना चाहते थे और तभी उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ स्टेज शो पर फोकस करने लगे। चांद छुपता है पर उसकी चांदनी कभी छुपती नहीं, कुछ इसी तरह वे आज हमारे सामने नहीं रहे लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती।

शाम के 6 बजे हैं। रविवार 24 मई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस और अफ्रीका के बीच एक नया हवाई रास्ता खुलने जा रहा है। अफ्रीकी विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इथोपियन एयरलाइंस जल्द ही मॉरिशस के प्लेजांस हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। ये नई कनेक्टिविटी जुलाई 2026 में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के ठीक बाद शुरू होने जा रही है, जो एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम है। शुक्रवार को कैबिनेट ने एक नए नेशनल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, जिसे भारी बारिश के दौरान लागू किया जाएगा। जैसे ही भारी बारिश की चेतावनी जारी होगी, निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन कल यानी कि सोमवार 25 मई 2026 से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये अभियान इस साल नवंबर के अंत तक चलेगा। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की एक संयुक्त पहल है। और विदेश स्तर पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें 24 लोगों की हो गई है मौत और 100 से अधिक लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस और अफ्रीका के बीच एक नया हवाई रास्ता खोलने जा रहा है, अफ्रीकी विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस जल्द ही मॉरिशस के प्लेजांस हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। ये नई कनेक्टिविटी जुलाई 2026 में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के ठीक बाद शुरू होने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। ये सीधी उड़ान से मॉरिशस के लिए व्यापार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नए और बड़े अवसर खोलेंगे।

0: इस घोषणा को लेकर आम यात्रियों के साथ साथ इथियोपिया और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में रह रहे मॉरिशस के प्रवासियों के बीच काफी उत्सुकता और खुशी का माहौल है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि शुक्रवार को कैबिनेट ने एक नए नेशनल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है जिसे भारी बारिश के दौरान लागू किया जाएगा। जैसे ही भारी बारिश की चेतावनी जारी होगी, निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कर्मचारी पहले से काम पर हैं और चेतावनी जारी कर दी गई है तो वे तुरंत अपने घर जा सकेंगे। अब तक सिर्फ मौसम विभाग की चेतावनी काफी नहीं थी, नियोक्ताओं को संकट समिति के आदेश का इंतजार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और यूनियन लीड्स का मानना है कि ये निर्णय एक पुरानी नाइंसाफी को दूर करता है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिल्वाना पागीमामन की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: हर गर्मी के मौसम में इस पर चर्चा होने लग जाती है। सरकारी कर्मचारी मूसलाधार बारिश होने पर घर जा सकते हैं। निजी सेक्टर के कर्मचारियों को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार करना होता है जो कभी कभी बहुत बाद में प्रकाशित की जाती है।
2: Quand ma machine vient près au roule, elle a où trouve lui.
3: Comme moi, on travaille à l'hôtel, c'est un cyclone de les passer. Quand une misère reste là-bas, deux jours, sur la nuit, nous inquiète nos familles, c'était la case quand nous qui peut arriver.
1: निजी सेक्टर और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति कायम की गई है। एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय किया गया है। मूसलाधार वर्षा होने पर निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर नहीं जाना होगा या फिर काम करते नहीं रहना होगा। इस तरह मालिक वर्ग को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना होगा। रियाज चतुर ने कहा, कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। मूसलाधार बारिश होने पर घर जाने का अधिकार सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज एक अन्याय को सुधारा गया है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। बहुत बधाई है कि ऐसा हो पाया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए काम होगा, इस पर बातचीत करनी चाहिए, ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, परिवहन आदि को लेकर भी। ये प्रोटोकॉल उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू है जो फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट सिस्टम पर काम करते हैं। मंत्री रेजा उतिम ने कहा, पहले तो वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स राइट्स एक्ट में कहा गया है कि निजी सेक्टर को अपने कर्मचारियों को लौटाना चाहिए नेशनल क्राइसिस कमेटी के आदेश पर। अब इसमें बदलाव होगा। मौसम विभाग की ओर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा कि निजी सेक्टर के कर्मचारी काम पर न जाएं। अगर काम पर हों तो उन्हें घर लौटाना चाहिए। सुधारों के साथ केवल आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को काम पर जाना ही होगा मूसलाधार बारिश होने पर। नेशनल क्राइसिस कमेटी की ओर से जारी विज्ञप्ति के बाद ही फिर से काम बरकरार रखा जा सकता है, ये कहते हुए कि निकलना सुरक्षित है। आपातकालीन सेवाओं के लिए कर्मचारियों को काम पर जाना होगा या फिर मौसम की बहुत खराब स्थिति में काम पर रहना होगा। सेवा प्रदान करने वाले हर एक संगठन को एक अंदरूनी प्रोटोकॉल तैयार करना होगा और बरकरार भी रखना होगा। साथ में एक निश्चित आपातकालीन योजना भी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ तक नर्सरीज और शिक्षा संस्थाओं की बात है तो कुछ भी नहीं बदला है। अलग अलग संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर होगा। इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाए जाने चाहिए। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट में भी सुधार लाए जाएंगे। क्राइसिस समिति के कार्य बढ़ाए जाएंगे और श्रम मंत्रालय तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
0: अब बात करते हैं ऊर्जा की खपत के बारे में। जी हाँ, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन यानी कि कल सोमवार 25 मई 2026 से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह अभियान इस साल नवंबर के अंत

0: तक चलेगा। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की एक संयुक्त पहल है। हालांकि सर्दियों के मौसम में गर्मियों की तुलना में बिजली की मांग लगभग 200 मेगावाट कम हो जाती है, फिर भी लोगों को जागरूकता करना बहुत ही आवश्यक है। इसकी मुख्य वजह मौजूदा भू राजनीतिक तनावों के कारण भारी तेल की आपूर्ति में आ रही बाधाएं हैं। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर विशेष विज्ञापन चलाए जाएंगे ताकि लोग बिजली बचाने के आसान तरीके सीख सकें। कम बिजली खपत करने वाले उपकरणों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े सुपरमार्केट्स और शोरूम्स में जागरूकता स्टॉल लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को अपने दैनिक बिजली खर्च पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मीटर और नई तरीकों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों में वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी ताकि काम के माहौल में भी ऊर्जा की बचत की जा सके। रिया रामभोजन की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: अक्सर सर्दी का मौसम आता है तो हमारी आदतें भी थोड़ी बदल जाती हैं। जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है।
2: Les diminuer d'une certaine façon, par exemple, de passer avec climatisation et les réservoirs, il y a presque normal de arrêter de plus de vent si nous voulons diminuer.
3: Normalement, les passants moins sont ces moments d'hiver. Côté la poutine, tout est bien l'appareil.
4: Vert, situation sous contrôle, zone réservée.
1: Central Electricity Board qui ose de pichler garmi ke mausam mein urja bachat par dhyan kendrit, sardi ke mausam mein bhi urja bachane se sambandhit jagruta abhiyan par kara rakha ja raha hai. Urja mantri Patrick Asiawaden ne kaha.
5: Nous envie de montrer mal Mauricien en général.
1: Hum Mauricienon ko batana chahte hain ki na keval garmi ke mausam mein samasya hai, सर्दी के मौसम में भी समस्या उतनी ही गंभीर है जिस तरह गर्मी के मौसम में। इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है। अगर छोटी छोटी हरकत या कुछ कदमों से बचत की जा सकती है तो निसंदेह बिल कम होगा और सीपी भी कम। कच्चा तेल मंगवाएगा बिजली उत्पादन के लिए। देश के लिए हैवी फ्यूल का दाम भी कम होगा। तापमान के घटने से चाहे बिजली की मांगें कम हुई हो, फिर भी लोगों को जागरूक कराना अहम है। अतः ये अभियान कैसे चलाया जा रहा है जानने की कोशिश की गई। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया,
5: C'est une campagne qui commence depuis l'école.
1: ये अभियान स्कूल से शुरू होता है। हमारी टीमें स्कूल में जाएंगी, मॉल्स में भी जा रही हैं, लोगों से भी मुलाकात करेगी। स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा कि क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है। बातचीत करेंगे, समझाएंगे, सहायता देंगे। इमो, सीबी, मारिना, ऊर्जा मंत्रालय सहायता करेंगे ताकि बिजली जाया न हो। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कई बिजली उत्पादन इंजनों का रखरखाव किया जाएगा। अधिक जिम्मेदाराना उपभोग की ज्यादा जरूरत होगी। ये अभियान 6 महीनों तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर से उन्हें नागरिकों के सहयोग से भारी उम्मीदें हैं। इसकी बदौलत सीबी पिछले गर्मी के मौसम की मांग पर 15 मेगावाट तक बचत कर सका है।
0: ऐसे सोरेन अस्पताल में 21 वर्ष की एक युवा महिला की मौत के बाद विभाग द्वारा एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। मृतक महिला 23 सप्ताह की गर्भवती थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला को बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया था, जहां उसे भारी ब्लीडिंग और गर्भाशय सर्विक्स के फैलने की समस्या थी। डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे एक ऑपरेशन व इलाज के दौरान महिला की स्थिति अचानक और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक सैंपिया की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वह गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली नियमित डॉक्टरी जांच या प्रसव पूर्व देखभाल नहीं ले रही थी। पीरियड्स से जुड़े संकोच को दूर करने युवा लड़कियों को जागरूक करने और महिलाओं के शरीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक खास पहल की गई है। रेकोनेक्शन प्लेटफॉर्म लाकाज बाबा की पहल का दूसरा

0: संस्करण इस हफ्ते आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय महिलाओं का मासिक चक्र था। ये जागरूकता अभियान रोजेल के प्लाजा में आयोजित किया गया था। कला, बातचीत और चर्चाओं के जरिए इस विषय पर बिना किसी संकोच या शर्म के खुलकर बात की गई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रीमियर लून नामक फिल्म भी दिखाई गई, ताकि लोग इस विषय को और संवेदनशीलता से समझ सकें। पूजा सुकालू।
1: महिला शरीर की सुंदरता को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ एक विषय के रूप में महिलाओं का मासिक पीरियड, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात करने से हिचकिचाती है। ऑड्रे की ये प्रदर्शनी ऐसे विषय पर बात करती है जिसे अब धीरे धीरे अधिक आसानी से चर्चा में लाया जा रहा है। ऑड्रे नानकू कहती है, पहले की तुलना में आज की पीढ़ी इस पर आसानी से आराम से बात करती है। मेरे परिवार में हम इस विषय पर खुलकर बात करते हैं। हमारे बुजुर्ग दादा दादी के लिए ये थोड़ी अजीब है, क्योंकि पहले के जमाने में ये बात घर के बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ महिलाओं के बीच रहती थी। कॉलेज में भी हम सब लड़कियाँ एक ही नाव पर जाती हैं, तो ये एक आम बात होती है हमारे लिए। अपने शरीर को समझना जरूरी है, विशेष रूप से युवाओं के लिए। एलिसा सेसिल कहती है, नेट पर सब कुछ ढूंढा जा सकता है, पर सब में सच्चाई नहीं होती, इसलिए इस विषय पर चेतना अभियानों का आयोजन एक अच्छी बात है। हार्मोनल समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, हम स्वस्थ हैं या नहीं ये जानना जरूरी है। इस ताबू को तोड़ने के लिए लाकास बाबा की पहल पर रिकोनेक्शन नामक प्लेटफॉर्म ने एक जागरूकता अभियान आयोजित किया। एक सप्ताह के दौरान युवाओं और बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया, जिसके जरिए महिलाओं के इस विषय को बेहतर ढंग से समझा जा सका। नाताली फिलोजेन कहती है, जब 9, 10 या 11 साल की एक लड़की को पहली बार उसका मेंस होता है, वो कैसे इसका सामना करती है, वो अपने माता पिता से इस बारे में खुलकर बात कैसे करती है, स्कूल में सहेलियों के बीच क्या बातचीत हो रही है, शरीर में परिवर्तन आते हैं पर फिर भी वो एक लड़की ही है, महिला नहीं, उसको अपने पास ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उसे सही और उचित जानकारी दे सके।
2: Culture, mais aussi ce côté médical, ce côté qui concerne l'écho même.
1: Au sol par upasthit logon ne Melanie Melo ki premier lune film ki screening bhi dekhi. Isse pehel ka uddesh khule baatcheet karna aur ek adhik swatantra aur jagruk drishtikon ko barhava dena raha.
0: ईसाई गिरजाघर में आज रविवार को पेंटेकोस्ट का त्यौहार मनाया गया। ईसाई कैलेंडर का ये एक प्रमुख त्यौहार है, जो ईसा मसीह के पुनरुत्थान के 50 दिन बाद प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के आगमन की याद में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र आत्मा का ये आगमन आग की लपटों के प्रतीक के रूप में हुआ था। इस अवसर पर पोर्टवी के बिशप मोंसेनियर जॉन मिकाएल जुरन के संचालन में एक विशेष प्रार्थना सत्र लगाया गया। आज शाम से हज की बकायदा शुरुआत हो रही है, और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हाजी मक्के से मीना की तरफ जाएंगे। इस शहर से हज के मराहिल शुरू होंगे। सबसे अहम दिन मंगलवार को योम अराफात होगा, जहां हाजी को ए अराफात पर जमा होकर इबादत और दुआओं में अपना दिन गुजारेंगे। मॉरिशस और रोड्रिक्स में स्क्विंट से पीड़ित 200 से अधिक बच्चों और वयस्कों के सफल ऑपरेशन किए गए हैं। भारत से आई एक विशेष मेडिकल टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मिलिंड किलेडर कर रहे थे, उन्होंने पिछले अप्रैल महीने के दौरे के दौरान ये सर्जरी की। ये पहल रोटरी क्लब बागेटेल और भारत के रोटरी क्लब पोंडिशेरी अगारम की साझा कोशिशों का नतीजा है। ये नेक काम लगातार

0: अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और इस साल इस मुहिम को स्क्विंट आई 4.0 नाम दिया गया, जिसका आधिकारिक उद्घाटन 23 अप्रैल 2026 को मोका में हुआ था। पोतली में स्थित अल्फा कॉलेज ने अपनी स्थापना के 60 साल पूरा कर चुके हैं और आकार में छोटा होने और छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद ये स्कूल बिना किसी भेदभाव या उनकी योग्यताओं को परखे हर पृष्ठभूमि के बच्चों का स्वागत किया जाता है। वहां पर यहाँ हर एक छात्र की जरूरतों को समझा जाता है और उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। ये संस्थान उन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है जिन्हें पढ़ाई में पीछे छूट जाने के बाद जीवन में आगे बढ़ने का एक सच्चा और दूसरा मौका होना चाहिए। इस स्कूल की बेहतरीन कोशिशों का असर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। इसके एक्सटेंडेड प्रोग्राम पढ़ाई के में कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष जो कोर्स है, वहाँ के कई पूर्व छात्र आज न सिर्फ सफल हुए हैं बल्कि अपनी आगे की उच्च शिक्षा को भी शानदार तरीके से जारी रख रही है। पूजा सुकालू की रिपोर्ट।
1: जब कोई यहाँ पोटली समय पुदरिया गली से गुजरता है तो शायद ही अल्फा कॉलेज आकर्षक ना लगे या ना दिखे, लेकिन इन दीवारों के पीछे एक अलग ही वास्तविकता है। यहाँ कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्र धीरे धीरे अपने आप में एक आत्मविश्वास पा लेते हैं क्योंकि उन्हें उनकी गति के अनुसार उपयुक्त सहायता दी जाती है। इनमें से कुछ छात्र पूर्व एक्सटेंडेड प्रोग्राम में शामिल थे, आज वे अपनी शैक्षिक यात्रा में अधिक आत्मविश्वास और बेहतर संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तायब सफाली कहता है, मुझे छठी कक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुआ, तब मैं यहाँ अल्फा कॉलेज में एक्सटेंडेड प्रोग्राम में प्री वोक में शामिल हुआ। यहाँ पर मुझे हौसला मिला आगे बढ़ने के लिए। मेरे अकाउंटिंग अध्यापक की मदद से मुझे इस विषय में एक मिला और मैथमेटिक्स में मैं पूरे मॉरिशस में तीसरे स्थान पर आया हूँ। निजल फाबिया कहता है, फेल होने के बाद मैंने अपने आप में विश्वास ही खो दिया था, सब कॉलेज ने अपना द्वार ही बंद कर दिया। यहाँ अल्फा कॉलेज में मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला सफलता की ओर जाने के लिए। अभिभावकों ने भी ये बदलाव महसूस किया है, वे इस मार्गदर्शन और नियमित फॉलोअप की सराहना करते हैं।
2: इसी कॉलेज अल्फा मैं प्रोफेसर इन बिएन ट्रावाया अवेक लीज इन एनकोरेज दी।
1: नासरा भोला कहती है, मेरे बेटे को आगे बढ़ने का मौका मिला है, अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन बहुत किया गया, वो अपना एनसी कर पाया है इसी मदद से। प्रेजिन आपादू कहती है, मेरे दो बेटे को यहाँ भेजकर मैं पछता नहीं रही हूँ, आज वे सफल हो पाए हैं, अनुशासन की राह पर चलकर वे जीत पाए हैं। इस प्रगति के केंद्र में है एक ऐसी शिक्षण पद्धति जो छात्र केंद्रित है, जहां हर कठिनाई को ध्यान में रखा जाता है। रीना ननकू कहती है, यहां पर हम परिवार की तरह रहते हैं, सभी नोट्स एकदम सरल होती है, बच्चों की तरक्की के लिए हम धीरे धीरे उनकी मदद करते
3: हैं।
4: Ils ont été traités comme étant inférieurs, incapables de pouvoir
1: Gulen Bose कहती है, हम बच्चों को समझाते हैं कि वे लोग बाकी बच्चों की तरह ही हैं, अलग महसूस होने नहीं देते हैं। प्रबंधन के स्तर पर धैर्य, नियमितता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन इस व्यवस्था के मुख्य स्तंभ है। अल्फा कॉलेज की रेक्टर नाजिमा वलाइडो कहती है, अल्फा कॉलेज में हम रिमीडियल कक्षाएं चलाते हैं, चाहे एक्सटेंडेड स्ट्रीम हो या मेन स्ट्रीम, ये कदम छात्र में आत्मविश्वास लेकर आता है। अल्फा कॉलेज में हर छात्र अपनी गति से आगे बढ़ता है, एक साझा लक्ष्य के साथ प्रगति करना, सफलता प्राप्त करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना।
0: लॉन्ग माउंटेन स्थित गंगा यमुना सरस्वती धाम स्पिरिचुअल पार्क में पिछले शुक्रवार को एक दिव्य आध्यात्मिक संध्या का आयोजन किया गया। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारत के गुजरात राज्य से पधारे पूज्य साधु त्याग वत्सल दास जी ने

0: अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से भक्तों को आध्यात्मिक संदेश दिया। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक का रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। और कुछ अन्य देशों की खबरें इस रिपोर्ट में तफसील के साथ सुमहरा अकबर अली।
1: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के चलते मौतों की तादाद 204 तक पहुंची है। संदिग्ध मामलों का आंकड़ा 867 तक पहुंचा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दूसरे 10 अफ्रीकी मुल्कों को खतरा है। युगांडा, रवांडा, केन्या और दक्षिण सूडान शामिल हैं। युगांडा में 3 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है। 1976 में कोंगो में पहली बार इबोला वायरस को पहचाना गया था। तब से लेकर आज तक 17 बार ये संक्रमण सक्रिय हुआ है। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को और सख्त बनाया है। अब अर्जी भेजने वालों को नए नियमों का पालन करना होगा। अब जो विदेशी अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं और अमेरिका में ही रह रहे हैं, उन्हें अमेरिका के बाहर अर्जी भेजनी पड़ेगी। यानी विदेशियों को अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश में अमेरिकी दूतावास के जरिए अप्लाई करने की जरूरत होगी। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका की खुफिया सेवा ने एक व्यक्ति का कत्ल किया। उसने गोली चलाई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक भाषण दे रहे थे। रूस ने कीव पर हमला किया है। व्लादिमीर पुतिन ने रिटालिएशन कार्रवाई का वादा किया था क्योंकि यूक्रेन ने पूर्व में जानलेवा हमले किए थे। 2 लोगों की मौत हुई है और दर्जन लोग घायल हुए हैं।
0: और अंत में मौसम का हाल।
2: मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक लागू है। मैस्कैनिन के दक्षिण में पाए जा रहे एक एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर और ठंड हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफी अच्छा रहेगा सिवाय देर रात को बादल कुछ घिर आएंगे। खासकर देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी। कल सुबह भी कुछ इलाकों में बारिश होगी और कोहरा भी छाया रहेगा। कल शाम को ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है। बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार समंदर खराब रहेगा और दक्षिणी समुंदर में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों को दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है तथा जनता से भी सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:35 पर होगा।

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम शिव को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। गेंगुदुलेन अपवेल में 47 साल की 47 years old की श्रीमती अल्विना गेंगुदु, पैदाइशी नाम अपादू और जिन्हें सब लोग अल्विना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के साढ़े नौ बजे उनके पति श्री सुबी गेंगुदु के घर गेंगुदुलेन अपवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। कन्हाई

इन लाफ्लोरा में, कन्हाई लेन लाफ्लोरा में 76 साल की 76 years old की श्रीमती नेलौती सुरुजबाली महादेव, श्रीमती नेलौती सुरुजबाली महादेव जिन्हें सब लोग रीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही कल दिन के साढ़े दस बजे उनके बेटे श्री उमेश महादेव के घर कन्हाई लेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। ग्रांबोआ लाल माटी में 73 साल की 73 years old की श्रीमती हेवंती देवधारी पैदाइशी नाम जोगी और जिन्हें सब लोग पार्वती रानी ठाकुराइन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री प्रकाश देवधारी के घर ग्रांबोआ लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथ्रोबोन में 96 साल के 96 years old के श्री देवदत्त गोकुल जिन्हें सब लोग टोंगौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। लातापी रोड बोनाकोई में 60 साल की 60 years old की श्री सूरजानंद घुमरिया जिन्हें सब लोग सुराज के नाम से भी जानते थे और जो नेशनल ऑडिट के HR मैनेजर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता घुमरिया के घर लातापी रोड बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लातापी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। श्वाजी बेजिकाप में 40 साल के 40 years old के श्री अजीव आरी जिन्हें सब लोग दावा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ श्रीमती सांताबाई इटू के घर श्वाजी बेजिकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते बेजिकाप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। Grand River South East, Camp de Pêcheur, Uttam Jagan Road, Grand River South East, Camp de Pêcheur, Uttam Jagan Road, में 56 साल के 56 years old के श्री मनोज फूरा जिन्हें सब लोग जीतन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं के घर ग्रांड रिवर साउथ ईस्ट कौदे पेशिया उत्तम जगन रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। रॉयल रोड एक्वायर में 67 साल के 67 years old के श्री दयादत्त राजवंती जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के घर रॉयल रोड एक्वायर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। वन शक्ति माता स्ट्रीट पेची बेलिया में 77 साल की 77 years old की श्रीमती देवंती देवलल पैदाइशी नाम पुरन और जिन्हें सब लोग माता जी देवी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे
कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री बिसुन दयाल देवलल के घर वन

शक्ति माता स्ट्रीट पिच बिलेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। रामा रोड शामुनी में 79 साल के श्री बसंत तैयब, जिन्हें सब लोग मोती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री सत्यम तैयब के घर रामा रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। और नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गैंट हिल यूके में, नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गैट्स हिल यूके में 57 साल के श्री राजीव कुमार गोपल, जिन्हें सब लोग राजीव के नाम से भी जानते थे और जो HSBC के पूर्व मैनेजर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बुधवार 27 मई सपहर के 3:30 बजे यूके समय अनुसार उन्हीं के घर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फॉरेस्ट पार्क यूके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेनेसडे ऑन 27 मई एट 3:30 PM अकॉर्डिंग टू यूके टाइम। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: RM3 Radio.
3: Nee so. छः बजकर 35 मिनट हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज रविवार 24 मई 2026 और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। जी हाँ, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए हर रविवार की तरह। जी हाँ, नई सोच कार्यक्रम आप लोगों के नाम हम पेश करते हैं 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद भूलिएगा नहीं डीरो की आवाज़ प्रोग्राम। तो चलिए, ये खूबसूरत गाना साजन का घर फिल्म से लिया गया, अपनी भी जिंदगी में प्यार ही प्यार होगा हमें यकीन है।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: हंसते हंसते जी हाँ नई सोच प्रोग्राम हंसते हंसते कट जाए ये रास्ते जिंदगी यूं ही चलते रहे खुशी हो या गम हो हम हमेशा हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि जीवन जो है ना कठिनाइयां हैं लेकिन उनका सामना करना हमारा कर्तव्य है

हमारा काम है। तो चलिए एक आखिरी गीत और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम नई सोच प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। 80s और 90s लवर्स, जी हाँ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, 7 बजे के बाद दिनों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन पाएंगे।

0: बोलो।
1: ये तो मुश्किल है।
0: सोचो, फिर से सोचो।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज.
4: 7 बजने को है दोस्तों और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. जी हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम लेकर आए हैं और रोज़ हमें पता है कि आप इस खूबसूरत प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से. और आज रविवार है और मैं उषा कौर हर रविवार की तरह आप लोगों के साथ और हम साथ निभाएंगे 9 बजे तक. देखा आपने कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5250-6200 और फ़ोन कॉल्स आप कर सकते हैं 4028070. धन्यवाद जो आप लोग साथ दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं. तो चलिए आज का जो पहला गाना है हमारे तमाम सुनने वालों के नाम जो हमें सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को खूब एंजॉय कर रहे हैं.

0: दिलों की आवाज़।
1: जी हाँ दोस्तों, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम खासकर आपके नाम 7:13 हो रहे हैं। आपने सुना ये बहुत ही प्यारा तराना आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम, दो ऐसे कलाकार जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी आवाज़ें जो है हमेशा दिलों में रहेगा। यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं फिल्म शागिर्द। वैसे हमने कहा दिल विल प्यार व्यार, यहाँ पर 80s और 90s का गाना हम चला रहे हैं, 80s और 90s ओनली। और यहाँ पर जो गाना आपने चुना है वो बहुत ही पुराना गाना है, इसके बदले में एक और बहुत ही प्यारा गाना 90s का, ये गाना आपके नाम खास कर संदेश तोगल की ओर से। जी हाँ, उनके पापा संदेश तोगल, तो मामा कल्याणी तोगल, भाई दिवेश और साथ में लेशिता और पूरे परिवार जो रहते हैं लोशे तेरूज।

7:19 हुए हैं। चलिए ये बहुत ही प्यारा गाना शोले फिल्म से लिया गया सूरज के लिए, जो हमें सुन रहे हैं थयोले से साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। ये गाना आपके नाम

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: सारे साथ बज चुके हैं और यहाँ पर खास गाना हम चला रहे हैं हमारी प्यारी अनीता जी के लिए. वो रहती हैं फिकों फ्लाक और साथ दे रही हैं. साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको. चलिए दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके नाम उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में.

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: 7:36 हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गाना फिल्म सुरक्षा से लिया गया। जी हाँ, वैसे आपकी जो चॉइसेस हैं क्या कमाल है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं आप ऐसे ऐसे गाने, लेकिन हमें मानना पड़ेगा जो भी गाने आप चूज़ करते हैं ना, लाखों में एक है। और यहाँ पर गुलशन भोला जी हैं जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, खास गाना वो मांग रहे हैं मामा प्रभा, बहन दीक्षिता, आयेशा और भोला फैमिली के लिए।

0: मंडोले।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों
1: की आवाज। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे जेन्स का ये खूबसूरत गीत। इस फिल्म में नजर आई ऐश्वर्या राय, जी हाँ, लाखों में एक हमारी जो प्यारी हीरोइन है, उन्होंने क्या डांस का कमाल दिखाया इस गाने पर। और यहाँ पर साथ ही साथ में अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं, अकेले हम अकेले तुम। जी हाँ, लेकिन हम तो अकेले नहीं हैं ना, क्योंकि आप लोग साथ दे रहे हैं और आप साथ देंगे 9 बजे तक, हमें पता है। और आप जहाँ पर भी हैं समय, या फिर घर पर डिनर कर रहे हैं, तो शुभ आहार आप सबको। और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं या फिर वापस घर जा रहे हैं, तो आपको हम कहेंगे ड्राइव केयरफुली, सावधानी से। और यहाँ पर स्वेनल तिलक हैं, जी हाँ, वो हमें सुन रही हैं समय, और ख़ास गाना वो मांग रही हैं अपने भाई श्रावण, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान, नाव्या परिवार और तिलक परिवार के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: बचकर 2 मिनट हुए हैं दोस्तों और यहाँ पर कहते हैं ना दोस्ती और भरोसा एक बार तो जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। कभी कभी ज़िंदगी में जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच होता है, इसलिए कहते हैं लालच से बचना चाहिए। चलिए अगला गाना बहुत ही प्यारा गाना, चलिए मूड को थोड़ा सा हम बदल देते हैं नाजा हसन की आवाज़ में और ये गाना रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं बुबासा से।

0: खेलों की आवाज
1: जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ना मन कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या रोक देता है हमें। लेकिन क्या सोचना, जो होगा देखा जाएगा, करो जो करना है, जो दिल को खुश कर देता है। और यहाँ पर अगला गाना खास कर हम चलाएंगे, लेकिन आपने अपना नाम तो नहीं बताया। चलिए, आपका जो परिवार है, सुंदर परिवार, आपके नाम, जी हाँ, आप है शारदा जी। जी हाँ, शारदा जी, तो अजनबी गाना आपको पसंद आया, चलिए बहुत ही खूब। और यहाँ पर फूल का ये खूबसूरत गाना खास कर आपके नाम, और साथ ही साथ में लवना के लिए जो रहती है रोजेल और इस समय हमें सुन रहे हैं, क्या बात है लवना, आपके नाम ये प्यारा गाना जाएगा 80s और 90s लवर्स के लिए। हमें यकीन है कि ये गाना आपको

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: कैसा है प्यार है ये तो अल्लाह अल्लाह क्या बात है अल्लाह ही जाने भगवान ही जाने कैसा प्यार है जब प्यार हो जाता है हमें पता ही नहीं क्या हो जाता है नींद उड़ जाती है चैन खो जाता है बस इन्हीं ख्यालों में डूबे रहते हैं कि उस इंसान की हम कब फिर से मिलेंगे उनसे बातें करेंगे और जो मन की बात है उनको कब कहेंगे और यहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना ऐ काश के हम जी हाँ कुमार सानू की आवाज़ में कभी हाँ कभी ना मूवी से लिया गया जी हाँ बहुत ही प्यारा गाना है और साथ ही साथ में ये गाना अक्षय के लिए और रीना जो हमें सुन रहे हैं बासन रोड काठोबोन से और पृथ्वी जी जो रहते हैं मोताबा गाना मांग रहे हैं अपने लिए और अपनी बीवी येशना के नाम और दो प्यारी बच्ची हैं रिया और स्नेहा और कहते हैं कि ये उनका फेवरेट गाना है तो चलिए आपके फेवरेट गाना को भी हम एंजॉय करते हैं

0: RM3 Radio. Radio.
1: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
2: कबूतर जा, जा, जा, कबूतर जा, जा, जा। कबूतर अभी नहीं जाएगा, अभी तो यहीं पर रहेगा, क्योंकि यहीं पर एक गाना हम चलाने जा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से लिया गया। जी हाँ, और आवाजें हम सुनेंगे लता जी और एसबी बाला सुब्रमण्यम। और जी हाँ, वैसे थोड़ी देर में हमारे जाने का समय आ ही जाएगा, और ये गाना आप लोग एंजॉय कीजिए। और ख़ासकर ये गाना माहेन जी के लिए जो रहती है पालमा, उनके लिए हम गाना चलाएंगे। और वो कहते हैं बैठे बैठे गीतों का मज़ा ले रहे हैं और बहुत यादें भी ताज़ा हो रही हैं, क्या बात है। तो चलिए, कबूतर जा जा जा

जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जी हाँ, अभी तो हमारे जाने का समय आ गया है, लेकिन हम आएंगे बहुत ही जल्द एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। और ये गाना जाएगा स्पेशली रीना के लिए, जो रहती है क्यूपिप और हमें सुन रहे हैं, और साथ ही साथ में निशा जो रहती है कैटरबोन। आप लोगों के नाम ये गाना, और इसी के साथ उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शुभरात्रि।

0: ठीक 9 बजे बाद दूसरा त्यौहार रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में उनकी दिखाते हुए टिकटॉक पेज पर
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3
2: 7 डेज अ वीक 24 आवर्स अ डे लाइव दिस इज रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
4: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर माल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
0: सब संगतियारों के जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल MBC रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में हमने के तू दिखाता हुआ टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के सबको के स्वागत करते हैं। आज दिमास की रात और आज दिमास 24 मई 2026 भुला गई आज रविवार 24 मई साल 2026 और अभी से लेके रात के 11 बजे ले नाचब सा गाओब सा झूमब सा कमरवा डुलाओब सा और अभिषेक भोजपुरी गीत के जलसा भोजपुरी गीत के गमत तुलुक के संगे संगे थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमा का जगह देव जगह बीत संग पर पहल का गाना है एगो भोजपुरी है किशोर किमिया के गावल गीत चलाती इस ओगेली खातिर ईशा फिर मीनाक्षी जो ना बीएम की देखा था वन टिकटॉक पर अभिषेक मीनाक्षी है गीत चली रीता सीतालू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कल को जन्मदिन बा बधाई और प्यार देवता को बेटा शैलेश बहु स्वस्थी पोती अनुष्का फिर बेटा साइलेन और सब सीतालू परिवार रीता सीतालू के धीमाना प्यार और आशीर्वाद और संगीता मिरन भी रीता सीतालू को बेटा हैप्पी बर्थडे। हाय विजया अगला गीत तोहर खातिर केनी मोनिगन है गीत और नाम नवश्याम है गीत और खातिर मीनाक्षी है

गीत और रखने चली। जितना कोई हमने के रेडियो पर सुना था, रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन, जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था, तो गीत तो लोग के नाम किशोर की मियां की आवाज़ तेरे साथ सुने।

सुनते हैं लोगों की तो सब कोई जाने ना कि अंग्रेजी में कहावत बा हेल्प इज वेल्थ तो स्वास्थ्य अच्छा बा तो सब कुछ अच्छा बा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रही तो कुछ भी अच्छा नहीं रही फिर भी लोग सिगरेट फुकल करेला और शराब पियल करेलन सर आई सिगरेट और शराब बहुत चीज बहुत खराब इकल से स्वास्थ्य खराब होला परिवार में दरार भी आवेला और परिवार बर्बाद हो जा रहा इस सिगरेट और शराब नहीं पिया सिगरेट नहीं फूकिया शराब नहीं पिया और बस अच्छा अच्छा गीत सुनिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर स्वास्थ्य अगर तोहर लगे बात वासत है उस स्वास्थ्य के अपन अच्छा से रखिया तब सब जिंदगी में कॉन्सेंट करेगी उस संगत अभी गीत मंगला बार टिकटॉक पर दाल पकड़ी दी भात पकड़ी दी कोकोम के सलाद तो सब रेडियो मनोरंजन रेडियो मोशन के लिसनर्स के नाम और जितना टिकटॉक फॉलोवर्स हमने की देखा था आर्यन सहानी 124 है गीत तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ यस और है गीत चलाओ तेज सा उमा देवी खातिर जो अभी हमने देखा था वन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर और अर्जुन सहानी की प्रोग्राम बड़ी अच्छा लगा था और नेपाल से ढेर को इनके साथ देवत वन बहुत बहुत धन्यवाद और चले एक साथ सुनेगी तो दाल पकड़ ली भात पकड़ ली अब जितना कोई अभी भोजन करा था बड़ी सब बोना पे सुरुचि चले एक साथ सुनेगी तो

आजकल खाए पिए के जितना सुविधा बा पहले के जमाना में नहीं रहा। हमने के जमाना में छोटा छोटा लीसा मार के भात हमने खाता लीसा मार छोंका जब भात पकाई बा तो मेरे को पानी रहेला उजर उजर ओके मार बोला ला ओकर में लहसुन प्याज या डाल के जब छोंक दी बा तो के मार

kabula la habikele kalu ni jani akikele kalu gen je bam chura chura la lisa tamama pakawe eh chulha me pakata lage aajkal ta sab suvidha ba bhaiya pakai ki aage ke zamane mein chulha me lakri me pakao tarisa machan par lakri rakhata hai to wo sab lupt ho le jata हमारा भी जमाना था हाँ कि नहीं रात के 9:19 अगला गीत पिति पिति पिमा को श्रोता मंगला कभी तो चलाओ आपसे तोहर खातिर कगिंद्र अधिक गीत तोहर खातिर आलम गीत तोहर खातिर एक गी है गीत तोरो नाम और है कि चाहते से सब संगतियारों के नाम जो ने वक्त काम करा था हमने के साथ दिवा था और धेर कोई घर पे हुआ जा आराम पर मावत हुआ था और हमने के साथ दिवा था वन था गीत लोग के नाम भी पीती पीती पीमान चल एक साथ सुने

0: Abih kau lah buat acara sengetiasa milik Purnima Fokira. Kau sebat kerap jahat. Abih kau bat sebab ni lah. Telefon ni kita nak kardi wala sa. Purnima tu kita telefon ni kah? Telefon nak kardi lah. Telefon ni kah? Abih line kulal ba. Ni betul. Muka ni jawab tu. Muka jawab tu betul. Kita per telefon ni kerja kardi wala sa. Very bad, very bad. Aisa nahi karte. जो गीत जब बज रहा था गीत बीच में नहीं सकब सकाटी ना गीत जब बज जाए तब तो हर कॉल ले वो सर अब बीचवा के बीच में बचा रहा सतन इच्छा बा हेलो गीता भाई नमस्ते
1: नमस्कार कैसे हो
0: हम ठीक हैं तू कैसे हवा
1: मैं भी ठीक हूँ
0: बड़ा जोर गमट हुआ था तो हर लगे
1: क्या
0: गमट हुआ था बोला था तो हर लगे बड़ा जोर
1: ना गमत नहीं
0: होता चेहरा गमत
1: सुना था चेहरा
0: जिंदगी में चेहरा थोड़ा सुन गमत करके हो का हो
1: कबो कबो पड़े
0: लगा हाँ तो अकेले रब तो ढेर स्ट्रेस में रब वो कहते नाचे की गावे की बोली जाए ना
1: ये तो जीवन है ना
0: ओके ओके तो बेशक हमने के साथ दिवा तो बहुत धन्यवाद और अगला गीत के कर कहते हैं
1: हाँ दादा तो हम एक गीत मांगा राधा नाचे ला कृष्ण बजावे
0: राधा के सो भेरा ना
1: हाँ
0: राधा नाचे
1: राधा
0: नाचे जोड़ी गीत बा राधा ते नाचे ला हमू ते नाचे ला कृष्ण भगवान
1: हाँ हमू कबू कबू नाचे ला
0: अच्छा बा हाँ अरे ये तो ऐसा परिवार लोग खाते
1: हमार बेटा हमार पतो
0: हाँ
1: और बेटी और तीन गो नाती दुगो नाती नहीं गो नाती बा
0: तो राजू के बोली माँ जोर बता सुन कमती कर दे प्लीज जब भी टेलीफोन कर बा राजू कमती कर दिया बोले
1: हाँ हाँ भुला गई हो
0: ए ताई से ना करी उनकी कान फाड़ जाए हो
1: हम काम से उतना नहीं सुनी ला
0: हम थावे तो बुझा था
1: हाँ,
0: जाये डॉक्टर लगे थोड़ा सुन डॉक्टर को दवाई डाली था अच्छा हो
1: जाए बोले बोले वाला पागी चाहिए डाली
0: थी हाँ लापागी वादा कान में डाला ला
1: हाँ तब अमर कैसे डाला रात दिन सही डाले की तब
0: हाँ हाँ नहीं जब ना है बत नहीं नहीं डाल बा जब दिन की कहूँ जाए बा तो सब बा डाली कनवा में चैना
1: था
0: चैना रेगुलर करेगी ना माता जी का कर भाई सब तो जीवन में
1: बा ये दुनिया के दस्तूर है भगवान के काम
0: सब कोई तो है में पासे हो रहा है ना आज के दिन कैसे बीता अच्छी तरह से
1: हाँ आज के दिन अच्छी तरह से बीता
0: ओके
1: और हमारे जो संगतियाँ रहन सा वो लोग आ रहन सा
0: ओके
1: अच्छा से बीता
0: ओके जी बहुत धन्यवाद और एक संगतियाँ बा राधा नोबेल फ्रांसे हेलो राधा जी
2: कैसे चला भी आई
0: तो ला पा रही हूँ मैं लोकल तो हर निम्रो तो हर नाम यहाँ पे एमबीसी में सब निम्रो बा है
2: प्रणाम भाई
0: प्रणाम हाँ प्रणाम कैसे हुआ
2: जलुक
0: बाजार गया था
2: सात ओला के मिनी के क्या बोला
0: था वह मिनी के जलुक बाजार गया था कौन
2: सी की जलुक गेला लेखा थोड़े तब मिनी थोड़ा काट देखा था कैसे
0: आ बिल्ली हाँ फजीरवा के छह बजे गई थी लेकिन बीस तब छोड़े तो ताकत है मेरी कोई पुपे छोड़ के चल गया का
2: भाई बोला तो मुझे खराब तो क्या दिक्कत
0: है तो खराब क्या दिक्कत है बिल्लियां बोलते
2: हैं पुपे नहीं बोला तो हम बोले भाभी देख कर कहाँ गए थे
0: अगला गीत क्या खाते क्या खाते मांगे तो बोला था
2: हमारे सब बहन खाते हैं जैसे हमारे भाई बंदा सबके मन में देख के बंदी वे बंदी को लेके काम बता रख के मन वे नितिन
0: आठों लोग खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भाग ले प्रोग्राम में हेलो
3: हेलो
0: नमस्ते
3: हाँ नमस्ते प्रताप
0: प्रेमिला जी काफी दिन के बाद तो टेलीफोन कर रहे थे वो
3: क्या बोली
0: हाँ कैसे बात आसान थी अच्छा
3: फोन में जीरो नहीं अच्छा रहा तो फोन जब कर रहे थे तो कोई नहीं ले कहूँ के परिवार नया ले ली तब तक थे सुने के
0: चल भगवान की दया से टेलीफोन अच्छा होगा अब सब फोन टेलीफोन करे और अगला गीत क्या कहते हैं
3: अगला गीत तीन गो बहना खातिर
0: और

0: बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर रहा हमने के शुक्रिया चाची ललिता कुशल त्रियोले से हेलो चाची
1: नमस्ते नमस्ते बेटा
0: कैसे हमारे चाची अच्छा हुआ ना
1: अच्छा है बेटा अच्छा है
0: हमने लिता कैसे बड़ी ठंडा करता है नहीं तो ठंडा गिरा था
1: हाँ
0: हाँ हो जो तो ठंडा बना हाँ तो मौका ठंडा के था
1: हाँ मालिंगा से पिए तो ग्रु
0: अगला गीत का खातिर
1: अगला गीत वो जन्मदिन के सौते डाल दिए बेटा
0: हैप्पी बर्थडे अरे चला दियो आपसे थोड़ी घड़ी में
1: अच्छी हमार नाती विदुर
0: हाँ
1: और समीक्षा आर्यन और कर माताजी उषा
0: लेका लोग भोजपुरी सुने ना
1: हाँ हाँ सुने रहा
0: सर ओके बहुत अच्छी बात है
1: और हमारे बहन सुदेवी के डाल दिया
0: हाँ सुदेवी तो हमें इस सामने के सुने ला ए ता मामा नहीं खूब खुशी रह रहा उनके प्रोग्राम
1: और छोटी दीदी के डाल दिया ओके और भावती के डाल दिया
0: ओके जी बहुत धन्यवाद और मालदीव से देर कोई हमने के देखा था सीडो और स्टे सीडो एंड स्टे मालदीव आइलैंड से हमने के देखा था वन और सुना था वन बहुत बहुत धन्यवाद अगला गीत और खातिर कृष्णा है गीत और खातिर और साथ में है गीत चली अब्दुल खातिर प्रेम खातिर करण खातिर राजीव खातिर निर्मला जया निर्मला बाई है गीत करण गीत और खातिर साथ में मीन खान रोज और जूलियो नानी है गीत और नाम वंशिका है गीत और खातिर और जितना कोई इनके साथ हुआ था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर जितना कोई इनके टिकटॉक पेज पर देखा था तो गीत तो लोग के नाम भी राधा के सोभेरा राधा के कौन सी सोभेरा चल एक साथ सुने

0: संगे एमबीसी रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: रात के 9:35 होता है और भोजपुरी तक का प्रोग्राम चलता है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर भी। अगला गीत को बर्थडे वाला गीत है बसंत सुपाल के गावा गीत हैप्पी बर्थडे। गीत चलते सब परी खातिर जाय खातिर शाज तेज खातिर भी और जितना कोई हमने कि सुना था भी रेडियो मॉरिशस पर गीत और नाम पूर्णिमा जी हमके साथ देवत हो। हेलो पूर्णिमा।
2: नमस्ते।
1: कहे तेरे कहे तेरे फोन काट दिया तारे वाहो आतंक करते रखे जी नहीं नहीं गीतवा फिनी तो सुनी करिए गीत के बीच में कैसे काटब सर नहीं अच्छा काटे के ना माँ अरे पाफी नहीं हाँ। अरे कैसे बस समाचार
2: चला था तो बस समाचार
1: परिवार सब कुशल मंगल
2: हाँ पार्टी तो बड़े नहीं
1: यार। और आज के दिन कैसे बितल
2: आज काम ही काम
1: आ, काम ही काम अब थोड़ा सा आराम परिवार आवे ला और राधा नाचे ऐसे जोर जोर से राधा नाचे दिखत हो ना और अगला गीत कर खातिर
2: खातिर
1: गीत जन्मदिन के
2: खातिर गाना मांगा था खातिर है गाना डाल दिया दादा के अंगनवा में नव फुलवा फुलागल फुलवा
1: के गई रखबा
2: हम ही गई ले हाँ?
1: दादा के अंगनवा में
2: हाँ नव रंग के फुलवा
1: आले आले चला दियो अब से
2: फिर वो सब हमने के फूल हा फुलाता
1: हाँ, तो लेकर लो हाँ जी हाँ फिकर नहीं बा
2: हाँ अरे ओकर जन्मदिन के शुभ बधाई ओकर माता जी पूनम ओकर पिताजी रोशन और ओकर दादी कौन नाम बा का दादी के सारस आरु करे को छोटा बहिन बा परी आरु कर मौसी बा एगो पुलिस इंस्पेक्टर बा मालिनी
1: ओकरो खाती
2: आरु कर मौसी बा पिंकी पूजा और हम है नानी पूर्णिमा अब फुकी का परिवार दसोई परिवार कन्या सेठी परिवार और खास कर से तो हर पूरी टीम
1: बहुत बहुत धन्यवाद तुमने की टेलीफोन कर ला और कुछ कहते वाला लाइन पर से मिलो जा। हेलो हेलो जी नमस्ते। हाँ संजय कैसे समाचार
3: सब ठीक
1: चला था धीरे धीरे बोला हाँ हाँ ठंडा ठंडा करा था ना हाँ नहीं अगला गीत क्या कहते अभी तो रात के काम करते हो कि घर ही हुआ ओके ओके ओके ओके तोहर खातिर भौजी खातिर और हुविष्का खातिर खासम खास अगला गीत ओके जी बाय ओके तो जितना कोई भी रात

काम करा तालुक की खातिर भी गीत करी अंसुरिया अन्ना थे गीत थोरो नाम साथ में गीत चरी सुकंज के नाम अनवर रहीम मिकाएल शीरा बाबूलाल दामो भी हमके साथ देवत हवन फिर परी हवन जा और मरियम मानिनी मानिनी पांडिया है गीत थोरो खातिर कैल्विन रामगुला बालकृष्णन लतीफ अंसुरिया अनत और नीश रागिनी है गीत और खतीर और जितना कोई अभी हमने की सुनते हो जाए बहुत प्यार

पेज पर तय की तरह के नाम और जिदा कोई जन्मदिन बाद ढेर माना प्यारा आशीर्वाद धनवंती कुंज भी हमी के साथ देव थवन चला एक साथ सुने बिलीला एल्बम से गीत हैप्पी बर्थडे बसंत सुपाल की आवाज़ में

ये प्रोग्राम रोज के चलेला लेंदी से लेके दिमाग ले एमबीसी रेडियो पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का और तड़का लगावा थी सत्य लोग के संगे संगे अभी रात के पौने 10 बजे था अगला गीत मेविन की ओर से राजेश के नाम रहेलन प्रोविडेंस को अच्छी मिली थी और मांग के सिंदूरवा खूब जोड़ी लगेला मांग के सिंदूरवा इतना जोड़ी लगेला कि कहा बोलबा और बेशक यहाँ पर है सामने तो लोग के साथ देख खातिर जानी ना सा कि मौसम थोड़ा भीगा भीगा बा और ठंड के मौसम शुरू होकर बा तो बेशक ठंड के मौसम के दूर भगाए खातिर नहीं से धमाकेदार हो छोड़ गई तो लोग के मनोरंजन खातिर तो चला एक साथ सुने अगला गीत बीच में आती सांपत्ति गावल गीत मांग के सिंदूरवा

भोजन हम करी रहा जहाँ बहुत ही प्यारा सन गाना और अभी कुछ छोटा सन कहानी थोड़ा सुनाओ अब कहानी के शीर्षक है रामू की मेहनत कुछ छोटा सन गांव में रामू नाम के वो गरीब आदमी रहता है लोकर घर मिट्टी के रहल और परिवार बहुत बड़ा रामू दिन भर खेत में मजदूरी करता लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलावत है कई बार लड़का लोग के खाए कि नहीं सकत देवे रामू बहुत ईमानदार और मेहनती भी वो कबो को इसे झूठ नहीं बोलता ना कबो चोरी करता हल दाल भात जो रहता वही खा ले हुआ गांव के लोग गरीबी दिक्कत दया करते लेकिन कोई कर मदद नहीं करी एक दिन गांव में एक भयंकर बारिश होल कई लोग फसल सब खराब हो गल उस समय रामू अपन थोड़ा सा बचा कुचा ना जो है वो एक बूढ़ी औरत के दिलक कहे क्योंकि घर में खाए की नहीं रहल ये देख के गाँव के मुखिया बहुत प्रभावित होल मुखिया अगले दिन पूरा गांव में एक इकट्ठा करलक और बोलक रामू गरीब जरूर बा लेकिन

का दिल बहुत बड़ा बा हमने की छाने कर मदद करे कि गांव वाला सब कोई मिलकर रामू के नया घर बनवाइलन सा और खेती के लिए जमीन देलन सा कुछ साल बाद रामू मेहनत करके फसल किसान बन गल लेकिन वो गरीबी के दिन कभी नहीं भुलाल वो हमेशा याद कर लग कैसे वो गरीब लोग की मदद करेगा कहानी के सीख ये है कि गरीबी इंसान के छोटा नहीं बनावेगा मेहनत ईमानदारी और अच्छा दिल के इंसान ही असली दौलत है तो इंसान चाहे गरीब कितना भी क्यों ना रहे पर अगर उकर दिल में बा दूसर की सहायता करे कि भगवान भी उकर सहायता करेला रात के 9:55 वंदना हमर सुना है गीत अचरावती निशान सिंह चुबा के नाम उकर पत्नी उकर बेटा बेटी दामाद और सब चुबा परिवार के नाम लिस्का जी रहन सा उमा जगन्नायक लिस्का जी से उकर बेटी दृष्टि दामाद और सब बहादुर परिवार का तेरा गीत वंदना हमर सुना चलो एक साथ सुने

रात के 10:05 हुआ था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तर का प्रोग्राम चलता और मनोरंजन के साथ साथ हमने तो लोग ढेर चीज बताए रहा सभी कार्यक्रम में और आज बता सकी भाजी खाए के कौन लाभ है तो भाजी खाए के स्वास्थ्य खातिर बहुत लाभदायक है करके विटामिन बा मिनरल बा फाइबर बा और कई पौष्टिक तत्व बा और भाजी जो है खेबा तो शरीर की ताकतवर बनावेला ओकर में आयन बा कैल्शियम बा विटामिन बी बा पाचन अच्छा रहेगा यानि कि डाइजेशन सिस्टम द्वारा अच्छा बनेगा भाजी खेला से देर को जब भाजी खा रहा तो उसके बार खूब लंबा घनघोर काला होला लंबा बार खातिर भाजी खाइया जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमने के इम्यून सिस्टम के ये अच्छा करेगा भाजी दिल स्वस्थ रहेगा और त्वचा और बाल अच्छा रहेला भाजी खेला से वजन संतुलित में रहेला और आँख के लिए भी भाजी खेला बहुत फायदेमंद है ढेर लड़का लोग के दिखी रहा सके और लोग चश्मा पहनेला आँख से निवन से नहीं लग केला तब भाजी खेबा तो और आँख हमेशा स्वस्थ रही तो अनेक प्रकार की भाजी बा पालक की भाजी मेथी की भाजी लौकी की भाजी गाजर की भाजी पत्ता गोभी टमाटर और मॉरिस में तो जानी जा सकी ब्रेड सुसुबा और ब्रेड नेशनल तद निमन से बिलौजे करके पका देवा भाजी बहुन देवा तब सब कोई खा ले प्यार से और जैसे कि बोली भाजी में ढेर तत्व बा है भाजी कोनो भी से मत सब समझ देवा खाए वो चाहे फजीर के हो 12 बजे या रात के डिनर में पर भाजी जो है लड़का लोग को भी नई खुशी रह रखा है जानी ना सर पर हमने बड़ा आदमी से लड़का लोग को जहाँ बताया कि भाजी खेबा तो तुम्हारा बार लंबा हो तुम्हारा आँख का अच्छा रही डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा अच्छा रही ठीक बा तो ऐसे में चला सुनब जगला गीत कृषि के गावल है बहुत ही प्यारा सन गाना चमेली बेटी जी हाँ बहुत प्यार से और हिगी चलावती विमला के नाम विमला के घर वाला और कर रहे दुगो लेकर खातिर संजय बिहारी गीत तोरो नाम तोर पत्नी सुरेखा तोर बेटा कुशल बहू बेटी रिंकू दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम सुनन चिटंकी गीत तोरो खातिर तोर बेटी दामाद और तोर सब परिवार के नाम

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल AM2 यानी कि रेडियो मॉरिशस पर। बस जिंदगी अपनी रफ्तार अपनी गति के साथ चलती जा रही है और हमने भी तो कदम से कदम मिला ही लिया है। कदम से कदम मिलाते हुए बस संगीत का दामन ना छोड़ने की कसम खाते हुए चल रहे हैं संगीत की दुनिया की तरफ, जहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल एवरग्रीन गोल्डन सॉन्ग्स, गोल्डन ईरा से। तो बस इंतजार किस बात का, हम और आप रहेंगे, हम सफर, इस सफर में चलेगा मिडनाइट तक।

0: कहते हैं कि संगीत सिर्फ कान तक नहीं पहुंचता, ये सीधे दिल से बात करता है। कभी पुराना गाना हमें बचपन में ले जाता है, तो कभी कोई धुन किसी अपने की याद दिला देती है। म्यूजिक वो साथी है जो बिना सवाल किए साथ निभाता है। तो आवाज बढ़ाइए और दिल को गुनगुनाने दीजिए।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कहते हैं कि जिंदगी में रफ्तार जरूरी है। इंसान जो रुक गया, बैठ गया, टूट कर बिखर गया, वो जिंदगी जीना भूल गया। इसे जरूरी है कि खुद को समेटे, पुरानी गलतियों से सबक ले और निकल पड़े। हाँ, जिंदगी में थोड़ी रफ्तार जरूरी है, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर वक्त भागते कहाँ रहेंगे, तो थोड़ा सा रुक कर इन गानों को एंजॉय कीजिए। खूबसूरत पल जो पीछे छूट गए हैं, उनको फिर से समेट लें। कभी रुक कर आसमान भी देख लीजिए, चांद आज भी उतना ही खूबसूरत है और तारे यूं ही टिमटिमा रहे हैं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कहते हैं कि अपने की जो प्रार्थना होती है और ये जो पुराने गाने होते हैं, दोनों जो होते हैं इंसान की जिंदगी में सुकून भर देते हैं। जब दुनिया थका देती है तो यही चीज़ें दिल को संभालते हैं। अपने जो है आसपास उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि और कुछ नहीं, यही असली खजाना, यही असली दौलत।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: बस बातों ही बातों में पहुंच गए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर और एक बार फिर से आपसे इजाजत चाहूंगा, एक बार फिर से फिर वापस लौट कर आऊंगा सुनहरे पलों के साथ, इन्हीं गानों के साथ, और ये आपका हमारा जो म्यूजिकल कनेक्शन है यूं बना रहेगा। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: झुमका
1: रेडियो मॉरिशस
0: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: ग्यान टैक नाउ टैक अरे दादा ये क्या गलती किया, इतना पिला दिया। अरे तो क्या कोई चोरी किया? नहीं दादा। कोई डाका डाला? नहीं दादा। कोई खून किया?